आला कहने श्रोताओ, मैं या तुहांदी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओ करदे न अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। वहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने तन दी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इंगे बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देने कार्यक्रम च अगे कने सुन देने कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जगहों से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
3: कहाँ चले?
4: वही सब,
3: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
5: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
3: है,
5: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पढ़ देगा।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
8: वही जो आप किया करते थे।
7: कौन सी?
8: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नज़र।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

शंभु की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: तो ये सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे कहाँ देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओं कार्यक्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 87%। जी हाँ श्रोताओं, बारिश का मौसम है और बारिशें झमाझम बरस रही हैं। वहीं कल के मौसम की अगर बात करें तो कल पूरा दिन धूप खिली रही और बारिश से सभी को राहत मिली और जो भी बारिश रुकने के बाद छोटे छोटे काम होते हैं वो सभी हम लोगों ने कर लिए। और श्रोताओं आज का विचार भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात हो रही है धूप की, तो एक और बात कार्यक्रम में शुरू में ही आपसे साझा करना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हमें जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है हम उसकी जो है वो कद्र नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हर सुबह सूरज निकलता है तो हमें लगता है सूरज का काम तो निकलना है, निकलना ही प्रकृति का भी नियम है। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी और सूर्यदेव के दर्शन जो है वो नहीं हो रहे थे और सब लोग परेशान हो गए थे, लगातार बारिश, कोई कामकाज नहीं हो पाना और ख़ासकर महिलाओं की बात करें तो कपड़े धोना, उन्हें सुखाना और घर गृहस्थी के और भी छोटे छोटे काम होते हैं जो कि धूप की वजह से नहीं हो पा रहे थे। तब हम लोगों को एहसास हुआ कि वाकई धूप का निकलना या सूरज का दिखना भी बेहद ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि जो चीज़ हमें ईजीली आसानी से मिलती है या मिलती रहती है उसकी कद्र हम नहीं करते हैं। और जिस दिन सूरज की तरह से वो चीज़ मिलना या वो कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, सूरज निकलना बंद हो गया, तब हम लोगों को एहसास हुआ कि वाकई में सूरज का निकलना भी हर रोज़ ज़रूरी है। उसी तरह से हमें उन चीज़ों का एहसास होना बेहद ज़रूरी है जो हमें मिलती हैं, चाहे घर वालों की ओर से या प्रकृति की ओर से। ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में हमेशा रखिए श्रोताओं, तभी ज़िंदगी खूबसूरत होती है और ईश्वर और भी अधिक खूबसूरत ज़िंदगी आपकी बना देता है। आपकी ज़िंदगी यूं ही खूबसूरत बनी रहे इसी दुआ के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपकी रेडियो दोस्त पिंकी आपका करती है स्वागत। और ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, हार मत मानिए, निराश मत होइए, क्योंकि ऑल इज़ वेल।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आज का विचार। कल की चिंता में आज का आनंद ना खोएं। जी हां श्रोताओं, अक्सर कहा जाता है कि भविष्य के लिए काम करें या भविष्य के लिए कुछ जोड़ें, लेकिन कई बार हम अपने भविष्य को बचाने के लिए या भविष्य के लिए जोड़ने के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आज को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए कल की चिंता में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि अपने आज के सुनहरे पलों को, सुनहरे अवसरों को आप यूं ही गंवा दें। कल की चिंता भी कीजिए, लेकिन आज जो वर्तमान समय आपके पास है उसका भी भरपूर आनंद उठाइए। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप हैं श्रोताओं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में, कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 एफएम पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोतो इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आज खास दिन उसके बारे में भी आपको बता दें, आज है 13 अगस्त 2026 और आज यानी 13 अगस्त के दिन एक बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है। इतिहास में 13 अगस्त के दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, उनके बारे में भी आपको कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे। लेकिन आज जो खास दिन है वो है विश्व अंगदान दिवस, उसके बारे में कार्यक्रम में विस्तार से आपके साथ चर्चा होगी। इस दिन का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्यों ये विश्व अंगदान दिवस मनाने की शुरुआत भारत में हुई या यूं कहें कि विश्व में हुई, इसके बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर भी, उससे पहले 9:20 पर लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार और यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना, कांग्रेस हाईकमान के साथ होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अवरुद्ध सड़कों की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी, प्रदेश भर में 600 मशीनरी तैनात। प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि 15 अगस्त को की जाएगी जारी। और लाहौल स्पीति के केलंग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति उत्सव कल से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 150 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने के परिणाम स्वरूप निजी स्कूलों से लगभग 24,000 विद्यार्थियों ने इन स्कूलों में दाखिला लिया है। बिलासपुर जिला के धरासनी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले जो विद्यार्थी लगभग 50,000 रुपये सालाना फीस देते थे, अब वे मात्र 2,000 रुपये में CBSE की पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 90% स्कूलों में लिखित परीक्षा के जरिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान बैठक में प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी हाईकमान से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में असफल रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए, मगर सरकार बनाते ही जनता पर तरह तरह के बोझ डालने का काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर 60 पैसे सेस लगाने से महंगाई में और अधिक इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य समेत सभी मूलभूत सुविधाओं को महंगा कर सरकार ने लोगों की परेशानियों में बढ़ोतरी की है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बरसात के दौरान अवरुद्ध हुई सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने के प्रयास जारी हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा के चलते हुए भूस्खलन के कारण बंद सड़कों को बहाल करने के लिए करीब 600 मशीनरी तैनात की गई है, जिसमें पोकलेन, JCB और अन्य मशीनें शामिल हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बागवानी क्षेत्रों में सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सेब सीजन के दौरान लोगों को परेशानी न हो। लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर प्रति लीटर 60 पैसे सेस लगाए जाने पर कहा कि भाजपा को प्रदेश सरकार से सवाल करने से पहले केंद्र सरकार से पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाने का कारण पूछना चाहिए।
1: पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर है, पहले तो उसकी जवाबदेही उनको देनी चाहिए। उनको जवाबदेही देनी चाहिए कि हिमाचल में बिटुमेन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से टारिंग नहीं हो पा रही है। हिमाचल में अगर कुछ सेस बढ़ा भी है, वो जो नेशनली बढ़ रहा है उसी तर्ज पे हिमाचल में भी उसमें जो है वो सेस लगाया गया है।
0: इस बीच शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज शिमला के पुराने बस अड्डे से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 30 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवाओं से नशे और HIV के खिलाफ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के सामने नशा सबसे बड़ी चुनौती है और नशे की चपेट में अब युवा HIV संक्रमित भी हो रहे हैं। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में HIV व एड्स के खिलाफ बेहतरीन कार्य किए जा रहा है और देश में सुरक्षित 15 जिलों में 3 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन शामिल हैं। कांगड़ा जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि बीते 5 महीनों में 4,70,948 राशन कार्ड धारकों को 62 करोड़ 68 लाख रुपए के खाद्यान्न वितरित किए गए।
2: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने का मजबूत माध्यम बन रही है। मार्च से जुलाई 2026 तक 5 महीने में जिले की 1161 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 4,70,948 राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 महीने में जिले में 7,164 निरीक्षण किए। इनमें 56 मामलों में अनियमितताएं सामने आई, जिन पर कार्रवाई करते हुए प्रतिभूति एवं मूल्यांतर राशि के रूप में 8.38 लाख रुपए वसूल किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत 4,967 पात्र लाभार्थियों को 15 अगस्त को कुल 20 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वित्तीय सहायता राशि का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा अभी तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों व उनके परिवारों को लगभग 95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कल कांगड़ा जिले में नगरोटा सूर्या के सुगनाड़ा में अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत करीब 450 BPL परिवारों के साथ संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। चंद्र कुमार ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में देहदान और नेत्रदान के प्रति लोगों के रुझान में वृद्धि हुई है। हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता ने बताया कि बीते 1.5 साल में 4 लोगों ने चिकित्सा शिक्षा के लिए देहदान किया, जबकि 3 लोगों के नेत्रदान से दृष्टिहीनों के जीवन में रोशनी पहुंची।
3: मृत्यु जीवन का अंत जरूर है, लेकिन मानवता की सेवा का नहीं। हमीरपुर में देहदान और नेत्रदान के प्रति बढ़ती जागरूकता इसकी मिसाल बन रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में पिछले 1.5 वर्ष के दौरान 4 लोगों ने चिकित्सा शिक्षा के लिए देहदान किया, जबकि 3 लोगों के नेत्र से दृष्टिहीनों के जीवन में रोशनी पहुंची। मेडिकल कॉलेज में अब तक 70 लोग मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प ले चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि मिल सकती है, जबकि देहदान मेडिकल विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना और शल्य चिकित्सा का व्यवहारिक परीक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: लाहौल स्पीति जिला के केलंग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव कल से शुरू होगा। 16 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: में आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय जनजाति मेला 2026 का आगाज साइकिल मैराथन प्रतियोगिता के साथ किया जाएगा। 14 अगस्त को दोपहर बाद भव्य शोभा यात्रा और पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं की महानाटी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता और शाम को स्थानीय कलाकारों सहित विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। 3 दिनों तक केलांग जनजाति संस्कृति परंपरा और विरासत के रंग में रंगा नजर आएगा। आकाशवाणी के लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पंजाब केसरी के शब्द हैं, विजिलेंस ने विधायक सुधीर शर्मा से मांगा 70 लाख की राशि के स्रोत और दस्तावेज। अमर उजाला का शीर्षक है, सिरमौर में वाहन खाई में लुढ़का, 4 की मौत, मकान गिरने से मां बेटी की गई जान। बीबीएमबी पर खुशखबरी करीब शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र की ओर से पेश एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मामला सुलझने के बने आसार। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, प्रदेश में अब तक 911 करोड़ का नुकसान, आज हल्की कल भारी बारिश की चेतावनी। विधानसभा सत्र को लेकर दैनिक जागरण की सुर्खी है, आपदा, सड़कों की खराब हालत, कानून व्यवस्था व शिक्षा स्वास्थ्य पर तपेगा सदन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना, कांग्रेस हाईकमान के साथ होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अवरुद्ध सड़कों की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी, प्रदेश भर में 600 मशीनरी तैनात। प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि 15 अगस्त को की जाएगी जारी। और लाहौल स्पीति के केलंग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव कल से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं।

श्रोतों 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं बातचीत भी करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन अंतराल के बाद अब आपको गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं भारत देश की। जी हाँ, भारत हमारा प्यारा देश जिसमें अलग अलग जातियों के रंग रूप के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग होकर के भी एक हैं। और भारत के अगर भौगोलिक बात करें हम, भौगोलिक दृष्टि से जो भारत है उसमें पर्वत भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, हर तरह का हम कह सकते हैं मौसम भारत में हम इंजॉय करते हैं और हर तरह के लोग हैं। सब कुछ अलग अलग विविधता होते हुए भी विविधता में एकता जो है वो भारत में पाई जाती है। इसलिए हम सब भारतवासी शुक्रगुजार हैं कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में रह रहे हैं। और श्रोताओं बस दो ही दिन बाद वही जश्न, वही खुशियों का माहौल 15 अगस्त को आने वाला है। वैसे तो हम हर दिन इस जश्न को मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद भारत में रहते हैं। और अगर बात करें आज़ादी से पहले के भारत की, तो उस वक्त के लिए हमारे जो देश के वीर जवान थे, क्रांतिकारी थे, कुछ लोगों ने अहिंसा का भी सहारा लिया और ये सब मिलजुल करके हम लोगों को आज़ादी दिलाने में सफल हो पाए 15 अगस्त 1947 को। तो आइए, अब भारत की बात हो रही है तो चलते हैं कार्यक्रम में इस देशभक्ति गीत की ओर।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिला के 1500 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 52,50,000 रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने मछुआरा समितियों पर लगाए गए 5 गुना जुर्माने को माफ़ करने तथा कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 70% से बढ़ाकर 80% करने की घोषणा भी की। उन्होंने पूरे प्रदेश में मछुआरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने के लिए 50 लाख रुपए तथा मछुआरों के लिए लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त झंडुता विधानसभा क्षेत्र में 10 संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सड़क के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय स्नातक महाविद्यालय झंडुता में BCA और BBA कक्षाएँ शुरू करने की घोषणा भी की। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में गदर फिल्म का गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में श्रोताओं अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की।

श्रोताओ, 13 अगस्त 1784 ब्रिटिश संसद ने पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। तेरह अगस्त आधुनिक स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी बियरले द्वारा किया गया। 13 अगस्त 1951 भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी। 13 अगस्त 1961 बर्लिन की दीवार के निर्माण की शुरुआत हुई, जिससे पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन अलग हो गए। 13 अगस्त 2016 भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया।

श्रोताओं, ये थी कुछ खास घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं आज के दिन यानी 13 अगस्त। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। ये गीत है श्रोताओं देशभक्ति गीत, बहुत ही प्यारा और कह सकते हैं कि आजकल के नए दौर से हट कर के ये गीत है, लेकिन इस गीत को जब भी हम सुनते हैं तो हमें आज़ादी से पहले के भारत के भी दर्शन इस गीत में होते हैं और एक अलग ही तरह का गर्व जो है वो महसूस होता है अपने भारत देश पर। तो इन्जॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा।

तो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व अंगदान दिवस है। एक अकेला व्यक्ति अपने अंगों और उत्तकों को दान करके कई लोगों की जान बचा सकता है। प्रत्यारोपण के लिए मिलने वाले अंगों की भारी कमी को पूरा करना आज के इस दिन का यानी विश्व अंगदान दिवस का खास महत्व है। इसके साथ ही भ्रम मिटाना, समाज में अंगदान से जुड़े मिथकों और डरों को दूर करना, किस तरह से श्रोताओं अंगदान किया जा सकता है। हमारे मुख्य अंग जैसे हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़े, आंते इत्यादि, और हमारे जो उत्तक हैं उनमें कार्निया, स्किन और हड्डियाँ, अंगदान किस तरह से काम करता है, जीवित व्यक्ति किस तरह से कुछ अंग जैसे लीवर और किडनी का हिस्सा ये व्यक्ति अपने जीवन काल में यानी वो अगर जीवित है उस समय भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकता है, और मरणोपरांत अंगदान उसमें आता है प्राकृतिक या ब्रेन डेड स्थिति में परिवार की सहमति से शरीर के स्वस्थ अंगों को निकाल लिया जाता है और मरीज के शरीर में वो अंग जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। श्रोताओं, विश्व अंगदान दिवस आज है और हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे स्थानीय भाषा में भी कहते हैं कि जिसको पूछा ना जाए बस वही सुखी है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चला होता है श्रोताओं, किसी ना किसी तरह का उतार चढ़ाव, और हम लोग जो हैं सामने वाले व्यक्ति को देख करके जजमेंटल हो जाते हैं, उसकी क्या परिस्थिति है, क्या हालात है, अंदर से वो कितना टूटा हुआ, कितना मजबूर है, ये जाने बिना हमें जजमेंटल होने की आजकल कह सकते हैं आदत है या बीमारी है। लेकिन आज का जो दिन है वो हमें ये एहसास दिलाता है कि स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से जाने किस तरह से होगा। और विश्व अंगदान दिवस के मौके पर हम लोग भी ये अपने आप से वादा कर सकते हैं कि जब हम इस दुनिया को अलविदा कहेंगे तो हमारे शरीर के जो स्वस्थ अंग हैं वो हम किसी ऐसे संस्थान में दान कर जाएं जो किसी न किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारे उन अंगों को प्रतिरूपित कर दें। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रोताओं जो जीते जी अपने शरीर के अंगों को दान करते हैं, जैसे कि किडनी का आपने सुना ही होगा कि बहुत लंबे समय से किडनी ट्रांसप्लांट होती है, और किडनी एक ऐसा हमारे शरीर का हिस्सा है जो हम अगर एक किडनी दान भी कर देते हैं तो जो दान करने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी सालों तक तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जो है वो जी सकता है। इसके लिए ज़रूरत होती है हमें उन चीज़ों के बारे में अच्छे से निरीक्षण करने की और अच्छे से स्टडी करने की, और अगर हमारे मन में कोई शंका, कोई डर है तो हम अच्छे से किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या किसी ऐसे काउंसलर से इस बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि किस तरह से हमारा शरीर ट्रांसप्लांट के बाद काम करेगा, या हमने जो अंग दान किया है उसके बाद क्या हमारे शरीर में जो है वो कमी होगी, उन सब को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि हम अपने शरीर के अंगों को जीते जी भी दान कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे भी बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं थोड़ी सी दोस्ती की। दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। जब भी जो सच्चे दोस्त होते हैं उनको जब भी हम याद करते हैं, अगर वो दूर हैं, विदेशों में भी होते हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो माध्यम बना करके हमसे बात करते हैं और हमारे दिल की बात को सुनते हैं। और जब हम उनसे बात कर लेते हैं ना तो मन का आधे से ज़्यादा भार जो है वो हल्का हो जाता है श्रोताओं। तो दुआ करते हैं आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दोस्त हों जो आपकी बातें सुने और अपने तक ही रखें और आपके मन के बोझ को हल्का करें। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लिए चलते हैं आपको नए दौर में। जी हाँ श्रोताओं, नया दौर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। और ये देश, जी हाँ हमारा देश भारत है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज़िला कांगड़ा में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसाय संचालकों, ठेकेदारों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को उनके परिसरों में रहने अथवा कार्य करने वाले व्यक्तियों का निर्धारित विवरण संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। जिला दंडाधिकारी बैरवा ने बताया कि पहले से चल रहे या नए किराए या सबलेंटिंग की व्यवस्था के संबंध में संपत्ति मालिकों, किराएदारों को संबंधित पुलिस थाना में 7 दिनों के भीतर निर्धारित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। इसमें पेइंग गेस्ट, दुकान, मकान आदि किराए पर देने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी भूमि अथवा परिसर में किराया या गैर किराए के उद्देश्य से झुग्गियाँ अथवा अस्थायी आवास स्थापित करने की अनुमति दी है, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा में संबंधित व्यक्तियों का विवरण देना होगा। जबकि घरेलू नौकरों एवं सहायकों को रखने वाले व्यक्तियों को भी निर्धारित घोषणा पत्र के माध्यम से उनके आवश्यक विवरण पुलिस को उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावा ठेकेदारों, संपत्ति मालिकों, व्यवसाय संचालकों एवं अन्य नियोक्ताओं को उनके माध्यम से किसी भी रूप में कार्यरत श्रमिकों, कारगरों का विवरण निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा। डीसी कांगड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ज़िले में कुछ ऐसे लोग भी निवास कर रहे हैं जो संबंधित क्षेत्रों के मूल निवासी नहीं हैं तथा रोजगार अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वहां रह रहे हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी भी इनकी सामने आई है। ऐसे व्यक्तियों का उचित सत्यापन एवं रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से अपराधों की रोकथाम और जांच में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसायियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिसर में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों का सत्यापित विवरण संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करवाएं। आदेश की अवहेलना करने वाले संपत्ति मालिकों, नियोक्ताओं, किराएदारों अथवा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी ये आदेश 10 अगस्त से प्रभावी हो गए हैं और 60 दिनों की अवधि तक प्रभावी रहेगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी और ये जानकारी विस्तार से देने का एक ही मकसद है कि ये जो आदेश हमें दिए गए हैं इनका हम पालन करें। और इस जानकारी के साथ ही एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, लेकिन अंतराल जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। प्यारा सा गीत सुनवाते हैं दोस्तों और उसके बाद आपके साथ वो बात भी साझा करेंगे। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज विश्व अंगदान दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज है 13 अगस्त और आज के दिन विश्व अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंगदान दिवस का इतिहास आइए जानते हैं। रोनाल्ड ली हेरिक अंगदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1954 में उन्होंने अपने जुड़वा भाई को अपनी किडनी दान की और डॉक्टर जोसेफ मरे ने इस सफल अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को अंजाम दिया। बाद में 1990 में अंग प्रत्यारोपण में प्रगति लाने के लिए उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंगदान संबंधी पहलों के संदर्भ में विश्व में विभिन्न भाग अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुसार अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी और इसके महत्व को दूर करने के प्रयास करते हैं। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा की गई थी और ये 2022 तक जारी रहा था। 2023 में भारत में अंगदान दिवस को 3 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया, जो 3 अगस्त 1994 को भारत में पहले सफल मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति में मनाया जाता है। श्रोताओं, अंगदान का क्या महत्व है इसके बारे में भी जानेंगे, पर फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। और अब आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म का गीत। जी हाँ श्रोताओं, अलीशा चिनाई की आवाज़, और ये आवाज़ अब कहीं खो सी गई है, लेकिन इस आवाज़ ने जितने भी गीत गाए हैं वो सब यादगार गीत हैं। उन्हीं में से एक बंटी और बबली फिल्म का ये प्यारा सा गीत कजरारे आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: मैडम, आई एम योर ओनली मैडम।
1: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं विश्व अंगदान दिवस की। जी हाँ, आज 13 अगस्त के दिन जो है वो अंगदान दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। क्या है इस दिन का महत्व श्रोताओं? अंगदान जीवन बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। अंगदान से अंग विफलता से पीड़ित लोगों को एक नया जीवन मिलता है। अंगदान के संबंध में चिकित्सा क्षेत्र में वर्षों से हुए सुधारों ने इससे जुड़े मिथकों को सफलतापूर्वक दूर किया है। ये दिन अंगदान के महत्व को समझाने का दिन है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि अंगदान के लिए स्वेच्छा से आगे आना लोगों के जीवन को बदल सकता है। अंगदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के दाताओं को पंजीकरण के लिए उसके माता पिता और अभिभावकों की सहमति जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अंगदान के दो रूप होते हैं, एक जीवित व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान और मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों को दान करना। जीवित अंगदान में जो अंगदान करने वाला व्यक्ति है वो जीवित ही रहता है, जबकि मृत शरीर के अंगदान में दाता मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान जो है वो कर सकता है। जीवित अंगदाता के अंग दान दाता होते हैं जो गुर्दे या यकृत के कुछ हिस्से जैसे अंगदान कर सकते हैं। मनुष्य एक गुर्दे के साथ भी जीवित रह सकता है, और यकृत शरीर का एकमात्र अंग है जो स्वयं को पुनर्जीवित कर सकता है, जिससे दाता के जीवित रहते हुए इन अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो पाता है। श्रोताओं, एक स्वस्थ दाता सबसे महत्वपूर्ण है। अंगदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस उसमें अंगदान करने की इच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा से वो अंगदान करना चाहे, और वो किसी भी धर्म जाति का हो सकता है। हालांकि ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि अंगदान करने का जो इच्छुक व्यक्ति है वो HIV, कैंसर, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित ना हो। अगर वह पूरी तरह से स्वस्थ है और स्वेच्छा से अंगदान करना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अंगदान कर सकता है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, और बहुत से लोगों को ऐसे लोग जो हैं वो पुनर्जीवन दे सकते हैं। श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं अपने देश भारत की, कि भारत आज़ाद है और हम खुशनसीब हैं जो आज़ाद देश में जीते हैं, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीते हैं। लेकिन श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम थोड़े से हम कह सकते हैं ग़ुलाम भी हैं। किस तरह के ग़ुलाम हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में जगह देते हैं, और वो छोटी छोटी बातें हमें मजबूर करती हैं फिर से ऐसी चीज़ों में बंधे रहने की, जिसे हम आज़ादी नहीं कह सकते। खैर, फ़िलहाल बात हो रही है आज़ादी की। आज़ाद देश में सांस ले रहे हर युवा हिंदुस्तानी को, बल्कि बच्चे को, बुज़ुर्गों को, सभी को आज़ाद देश में रहने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और इन्जॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।
2: बसंती चो

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में एक जानकारी आपके साथ साझा की थी हमने कि किराएदारों और जिस भी व्यक्ति को आप काम पे रखते हैं उनका जो है वो निरीक्षण करना ज़रूरी है, उनका आधार कार्ड या जो भी उनका पहचान पत्र है वो रखना ज़रूरी है और उसे पुलिस स्टेशन में देना ज़रूरी है। और इसी खबर से एक बात मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रही थी। हमारे घर से थोड़ा सा नीचे एक दुकान है और एक रेन शेल्टर है, और घर जो है वो ऑब्वियसली धर्मशाला में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में ही रहती हूँ, बल्कि गांव भी थोड़ा ऊपर ही है। तो उस दुकान के साथ एक रेन शेल्टर है और वहाँ पे अचानक से ही एक महिला जो है वो दो तीन बोरियाँ सी और उनमें कुछ एक बर्तन लेकर के उस रेन शेल्टर पे रहना उसने शुरू कर दिया। और ये जुलाई मिड की बात है, और एक दिन वो रही और हमें लगा आस पड़ोस के लोगों को कि शायद कुछ जो कचरा वगैरह बीनते हैं उस तरह से कोई होगी और अपनी बोरियां वोरियाँ लेकर के यहाँ पे रुकी होगी आराम के लिए। लेकिन देखा तो रात तक उसने उस रेन शेल्टर में एक तार सी बांध दी थी और वहाँ पे अपने कपड़े वपड़े टांग दिए थे। वो उसने अपना स्थायी निवास उस रेन शेल्टर को बना लिया, और आते जाते जब हम लोग देखते थे तो वो महिला मिड एज्ड महिला थी, लेकिन उसको देख के ये बिल्कुल नहीं लगता था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या उसे कोई किसी तरह की बीमारी है। बिल्कुल फिट थी, पर थोड़ा सा वो हरकतें करती थी अपने आप को अस्वस्थ दिखाने की या पागल सा दिखाने की। फिर गांव वालों ने उस दुकानदार को कहा कि तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है, महिला है, अगर कोई पुरुष होता तो उसे कह भी सकते थे कि यहाँ मत बैठो, मत अपना डेरा जमाओ, लेकिन वो महिला डेरा जमा करके बैठ गई। और हिमाचल की वो नहीं थी, ऑब्वियसली उसके पहनावे से रंग रूप से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बाहर की है। फिर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो 1-1.5 साल से इससे पहले ऊपर जंगलों में कहीं रहती थी बिना घर के। पता नहीं उस महिला ने कैसे जंगलों में 1-1.5 साल बिताया होगा। फिर पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो ना तो उसके पास कोई किसी तरह का आधार कार्ड था, ना ही अपनी पहचान थी। फिर अब ऐसा कहना भी उचित नहीं होता कि वो कौन सी स्टेट की थी, क्योंकि भाषा और रंग रूप से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम लगा लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ हिमाचल की थी वो। पुलिस वालों ने उसे कुछ दिन की मोहलत दी कि इतने दिनों में आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड जो भी है वो दिखाओ, नहीं तो यहाँ से उठ जाओ। और वो महिला ढीठ बनी रही, वहाँ से नहीं उठी, और मजबूरन फिर 8-10 दिन उसके रुकने के बाद फाइनली पुलिस वाले आए और उसे उसकी जो भी सामान था, जो बोरियां थी जिसमें बर्तन वर्तन रखे थे, उसे डाल करके वो ले गई। और उस सामने जिसकी दुकान थी उस बच्चे ने भी राहत की सांस ली कि चलो चली गई है, क्योंकि उसके लिए भी क्रिटिकल था, लेडी है, वो क्या कहे उसे कि यहाँ से उठ जाओ या मत जाओ। अगर वो कुछ कहता तो आगे से वो उल्टा पुल्टा कुछ जवाब देती थी, और जिस तरह से उसका व्यवहार था उससे बात की गई तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में वो बात करती थी, बड़ी फ्लुएंट थी वो कोई भी भाषा बोलने में, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता था कि शी इज़ हाईली क्वालिफाइड। तो वो क्यों इस तरह से आकर के बैठी हुई थी डेरा डाल करके, इस बात का हम गांव वालों को तो अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन हाँ पुलिस उसे ले गई है तो हो सकता है उनकी जांच पड़ताल में कुछ सामने आया हो कि वो कौन थी, कहाँ से थी और क्या करने के लिए वहाँ डेरा डाल के बैठी थी। तो श्रोताओ, ये बड़ी अच्छी जानकारी डीसी साहब ने हम लोगों के लिए साझा की है कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी जो है वो जानकारी रखना ज़रूरी

है, क्योंकि पता नहीं होता कि सामने वाला क्या जासूसी कर रहा हो किस भेष में आकर के, या कोई भी उल्टा सीधा काम कर जाए और हम यही सोचते रहें कि बेचारा है, वो बेचारा क्या करके आगे निकल जाएगा हमें पता ही नहीं होगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, हम भी यही कहेंगे। और जिस किसी को भी आप काम पे रखें उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करें। श्रोताओं, आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और बातें बहुत हो गई दोस्तों, अब थोड़ी सी मौज मस्ती करते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

जी हाँ श्रोताओ, मौजा ही मौजा। ज़िंदगी में जब ऐसा मौज मस्ती वाला माहौल बन जाता है तो दिल करता है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। और हम यही दुआ करते हैं कि आप सभी श्रोताओं की ज़िंदगी में भी मौज मस्ती और धमाल यूं ही बना रहे। और श्रोताओ, ये मौज मस्ती का जब माहौल बनता है तो दिल इस मौज मस्ती से बाहर आना ही नहीं चाहता। खैर, हम भी जब तक हैं तब तक बाहर जाने नहीं देंगे और सुनवा रहे हैं आपको हे बेबी फिल्म का गीत, जिसे गाया है मास्टर सलीम और साथियों ने। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और साथ ही साथ 88.4 MHz पर इस समय हमीरपुर में ढटवाल की आवाज़ पर भी हमें सुना जा रहा है। श्रोताओं कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप मेरे रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में कार्यक्रम का अंतिम गीत

जी हाँ श्रोताओ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। रेडियो गुंजन का सफर मेरा आज का बस यहीं तक, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रही? भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज कर लो। स्कूटर भी और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

रंगों की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इसने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। अच्छा, कहाँ देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है।
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार आ गया हूँ एक नई कहानी को लेकर, अंगदान से जुड़ी हुई और देहदान से जुड़ी हुई। दोस्तों, हमने कई बार सुना है अंगदान और देहदान बहुत अच्छा काम है, लेकिन इससे लोगों को फायदा होता क्या है? तो आज की कहानी जो है वो एक देहदान के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो आज के हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी मदर की देह को मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, अच्छे से रिसर्च कर पाए। तो आज की कहानी में हम उनसे बात करके यही जानेंगे कि कैसे इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया और किस तरह से पूरी चीजें हुई और इससे फायदा, इससे आउटकम क्या निकलता है, ये इतना फायदेमंद माना जाता है। आइए चलते हैं, हम आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। आज के जो मेहमान है उनका नाम है बालाजी अय्यर, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी सिस्टर भी है जिनका नाम है रीति अय्यर, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। तो दोनों भाई बहन आज यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी मदर जिनका नाम राज लक्ष्मी अय्यर जी था, 86 ईयर्स की एज में, 85 ईयर्स क्रॉस कर गई थी, 86 ईयर की एज में उन्होंने उनका देहदान किया मेडिकल कॉलेज को। बालाजी सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेवती जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारे श्रोताओं का आप सबसे पहले ये बताइए कि देहदान के बारे में आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपकी मदर का नेचर कैसे था, कैसा था, मतलब क्या करती थी वो, किस टाइप का उनका व्यवहार था?
3: सर, मैं मेरी मदर है ना, बहुत ही जेनरस नेचर की थी उनको। एक तो वो टीचर भी थी बाय प्रोफेशन, तो उनको सिखाना भी अच्छा लगता था और दूसरों को कुछ भराई हो अपने से, कुछ छोटी भी चीज, छोटी से छोटी चीज दे दे तो बोलती थी नहीं देना चाहिए, कर देना चाहिए हेल्प। दैट वाज हाउ शी वाज,
2: हेल्पफुल थी बहुत जी। देहदान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
4: हाँ, मैं ये आंसर करता हूँ। ये सोशल मीडिया वगैरह में काफी, जैसे ऑर्गन इंडिया है उनके एडवर्टाइजमेंट है और दिल्ली में शायद एक देहदान ददीची
2: देहदान है,
4: तो ये सब कुछ सालों से पढ़ रहे थे और हमें ये भी पता चला कि हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत लोग ऑर्गन डोनेशन से बेनिफिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह।
2: बिल्कुल।
4: तो मैंने खुद भी कुछ साल पहले अपना ऑर्गन इंडिया के साथ रजिस्टर किया था ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो जब अभी हमारी मदर गुजरी तो हमने सोचा उनके याद में कुछ ऐसा काम करें जो जिससे समाज को बेनिफिट हो, तो इसलिए हमने डिसाइडेड।
2: ये तो हुई आपकी प्रेरणा। क्या कभी ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपकी मदर ने कभी इस चीज पर डिस्कशन किया था या कभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर की थी?
4: डायरेक्टली नहीं, बट उन्होंने कहा था कुछ मेरे गुजर जाने के बाद कुछ यूजफुल समाज के लिए तरीके
3: डोनेशन देना चाहिए,
4: डोनेशन देना चाहिए, ऐसा बोला था
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के परिवार में किसी की डेथ होती है तो बहुत सारे परिवारजनों से जब पूछा जाता है अंगदान या देहदान के बारे में तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया और हम कैसे कर सकते हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है। तो मैं बस पब्लिक को, मतलब हमारे श्रोताओं को ये समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल कई बार जानकारी के अभाव में आपके जो परिजन होते हैं जो गुजर जाते हैं वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन दान कोई बुरी चीज़ नहीं है और दान करने से किसी की फीलिंग्स को कोई ठेस नहीं पहुँच सकती, उल्टा एक स्ट्रेंथ ही मिलेगी आपको उस गम, उस दुख के समय में। तो जी जी, सो बालाजी सर, आप हमें, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किस तरह से आपने ये चीज डिसाइड की, मतलब जब उनकी डेथ हुई तो क्या वो बीमार थी या फिर बिल्कुल नेचुरल एज के कारण जो डेथ हुई थी उनको?
4: बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल हेल्दी थी, तो जो भी डेथ हुआ नेचुरल कॉजेस के कारण ही हुआ
2: जी।
3: और मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि वो पिछले खासकर 3-4 साल से शी वॉज अ रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर और एक्सरसाइज वॉकिंग सब करती थी और मेडिटेशन और ब्रीदिंग करती थी, तो उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहा टिल द लास्ट मिनट। ओके, और वो बहुत अच्छी तरीके से गई
2: जी। रेवती जी एंड बालाजी, आप दोनों हमें ये भी बताइए कि मतलब कई बार ऐसा होता है परिजन होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि इतने दुख के समय में हमें ये चीजें याद नहीं आती, तो जब ये आपके साथ हुआ तो इतने दुख के समय में आपको कैसे इन सब चीजों की प्रेरणा मिली, कैसे ये चीजें याद रही कि आपको उस दुख के समय में मतलब देह दान करने का याद रहा और आपने कांटेक्ट किया हमें ऑर्गन इंडिया को एंड देन फिर डोनेशन हुआ, उन लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो किस तरह से इस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं?
3: एक्चुअली मेरे भाई बालाजी जो हैं उन्होंने आके ये बात मुझे जिक्र की when our mother passed away, और मैं एकदम चमक उठी, मैं I became very happy when I heard that. Because, I mean, of course, traditionally, body को जला देते वो सब करते हैं वो तो है, but I felt this would be the perfect gift to her being a teacher and her a mother's body that it is being used even after death.
2: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो टीचर थी।
4: और ऐड करना चाहता हूँ, उनका डेथ 4 सितंबर को हुआ और ये डोनेशन हुआ 5 सितंबर को, जो हमारे जो टीचर्स डे है
2: जी बिल्कुल
4: उस दिन हुआ था, उस बात से हमें काफी मतलब आश्चर्य हुआ,
2: बिल्कुल
4: सुकून भी मिला।
2: ये तो बहुत ही अनोखी बात हुई कि एक टीचर जिनका प्रोफेशन टीचर था, जिनका पैशन टीचर था, वो अपनी मृत्यु के बाद भी बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, अभी भी वो पढ़ा रही हैं। और उनका जो डोनेशन हुआ वो भी टीचर्स डे के दिन हुआ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो अगर आप कुछ चीज अच्छे से चाहो तो भगवान भी उस चीज को पूरा करने में लग जाते हैं।
3: भी पूरी तरह लग गया कि बोलते हैं ना, वैसे ही हो गया
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेवती जी एंड बालाजी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
5: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं बालाजी सर से और रेवती जी से, जिन्होंने अपनी माँ का देह दान किया था। तो बालाजी सर, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि हमारे समाज में इन चीजों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि अगर हम देहदान या अंगदान जैसा काम करते हैं तो हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमें वो अंग मिलेंगे ही नहीं, या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बीइंग अ तमिल कम्युनिटी, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग तो बहुत ज्यादा रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा अपने कल्चर से डीपली जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों को आपने कैसे टैकल किया, या फिर आपके मन में कभी कोई ऐसा डाउट आया हो, या उस डाउट को सॉल्व कैसे किया आपने?
2: हाँ जी, देखिए हमारे कम्युनिटी में भी ऐसे काफी सारे बिलीफ्स वगैरह हैं, रिचुअल्स वगैरह बहुत है, लेकिन हमको ये लगा, मेरे मदर को भी बहुत ज्यादा रिचुअल्स में विश्वास नहीं था। और रही बात ये इस बिलीफ की कि अगर हम अंग दान करते हैं तो हमें अगले जन्म में अंग नहीं मिलेगा, हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते। अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका भला ही मतलब होगा, अगर कुछ होना है तो। सिमिलरली देह दान हमने सोचा, देखिए एक तो एक महान कार्य है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक रिसोर्स मिल रहा है, तो हमें लगा कि इससे बढ़कर और महान काम क्या हो सकता है। पूजा पाठ तो चलिए हम करते हैं, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है ना।
3: एक और बात है कि उनको वो हर समय बोलती थी मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। और हम ये जब देह दान की बात छिड़ी तो मतलब ऐसा

0: कि यही मोक्ष का तरीका है कि जाने के बाद भी इतना अच्छा काम कर गई तो भगवान इससे ज्यादा और किस चीज से खुश होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: वैसे तो राख होके खत्म हो जाता शरीर, अभी देखिए वो कितने स्टूडेंट्स कितने जनरेशन तक उसको पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, जो दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि वो अपने मतलब ड्यूरिंग होल लाइफ टाइम वो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको ये मौका दे दिया जाए कि अपने जाने के बाद भी आप बहुत सारे लोगों की मदद करें और वो भी अनंत काल के लिए, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है।
2: आजकल ये हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण है, आई मीन वातावरण बदल रहा है, यू नो धरती को ठेस पहुंच रहा है, पेड़ कट रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि हम किसी शरीर को हम दहन करते हैं, बहुत सारा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। हमने सोचा एक इसलिए इको फ्रेंडली मेथड भी है ना,
1: बिल्कुल,
2: इसलिए हमने हमें उस एंगल से भी फेवरेबल लगा
1: जी। सो बालाजी सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो इन चीजों में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो दान के लिए बिल्कुल खुले हाथ से स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे कई बार रिश्तेदार होते हैं वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते और वो उस चीज पे वहां पर ऑब्जेक्ट करते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं फैमिलीज में। तो क्या आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, मतलब आप और रेती मैम तो तैयार थी लेकिन हो सकता है कभी किसी रिलेटिव ने इसको अपोज किया हो या उन्होंने इस बात को नहीं समझा हो, तो उस चीज अगर हुआ हो तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया?
2: ऐसा फॉर्चुनेटली हुआ नहीं था
1: जी।
2: तो लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये इसके बारे में ना किसी को जीते जी सोच विचार कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब कोई गुजर जाता है उस टाइम पे बाकी परिवार के लोग बड़े भावुक इमोशनल स्टेट में होते हैं
1: जी।
2: तो इसलिए उस टाइम दिमाग साफ साफ काम नहीं कर पाता है, तो कई तरह के डर भ्रम वगैरह ये जो बिलीफ है वो सब आ जाते हैं, तो आप क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो पहले सोच लेना अच्छा है।
0: और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसे डाउट हो कि अंगदान करना चाहिए या ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को देना चाहिए, वो ना खुद जाके ऐसे स्टूडेंट से बात करें या किसी को जिसको अंगदान मिला है उनसे बात करें, ताकि उनको एक डिफरेंट एंगल मिलेगा इस सब्जेक्ट के बारे में और उनको समझ में आएगा उनको कितना जिसको भी मिला है उसको कितना फायदा हुआ है इससे
1: जी। लेकिन रेती जी पूरी समस्या तो यही है कि लोगों के मन में जब इस तरह से इन टॉपिक्स पर जब डाउट्स आते हैं तो वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं और वो किसी बात ही नहीं करते, अपने डाउट क्लियर नहीं करते। ये डिस्कशन हमारी फैमिलीज में होता ही नहीं है कि हम दान करना चाहते हैं अपने शरीर को या अपने अंगों को, इन चीजों पर डिस्कशन होता ही नहीं है।
2: होना चाहिए
0: चाय समोसे के साथ बात करते हैं ना घर में, बाकी चीजों के बारे में हंसते हैं खेलते हैं, सर ऐसी चीजों के बारे में भी थोड़ी बातचीत यंगर जनरेशन को छेड़ देना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम अप्रोच करें ताकि वो अपने फैमिली में जाके डिस्कशन को स्टार्ट करें। बिल्कुल
0: एकदम चाय समोसे के साथ।
1: बिल्कुल चाय समोसे के साथ। ये इतना सीरियस टॉपिक रहता है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे स्टार्ट भी करते हैं तो माँ बाप उन्हें चुप करा देते हैं कि नहीं अभी ये सब बातें मत करो प्लीज।
0: नहीं, तो उनको ना कुछ अच्छे अच्छे डिश बना देना चाहिए बच्चों को और उसके साथ बैठ के सब, ताकि मम्मी पापा खुश हो जाए फिर इस बात को छेड़े कि आपको क्या लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सजेशन हम जरूर देंगे।
2: संस्थाओं की तरफ से भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है ताकि पेरेंट्स अगर उनको अप्रोच करें उनके थ्रू, एंड क्योंकि बच्चों को तो पेरेंट्स तो मुंह बंद करा देते हैं ना
1: जी।
0: आजकल एक खुला माहौल बन रहा है, डिस्कस भी करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, पर उनको थोड़ा उसके लिए पुश करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, हम आपके सजेशन जरूर लेंगे चाय समोसे वाले और बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे कि अच्छी से डिश बना के वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
2: फेस्टिवल वगैरह में भी अपना स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े।
1: बिल्कुल लगाते हैं सर, हम हॉस्पिटल में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि आईसी मटेरियल इंस्टॉल किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जा सके। सर हमारी श्रोताओं का आप ये भी बताइए कि आपको किस तरह का पेपर वर्क का सामना करना पड़ा जब आपने ये दान करने का निर्णय लिया, तो कितना समय लगा पूरी प्रक्रिया में?
2: हाँ, ये एक्चुअली जो टीम आया था जो जो मेडिकल कॉलेज आपने जो रेफर किया था उनके लोग आए थे डॉक्टर, वो पेपर्स लेके आए थे। परमिशन ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर से लेना पड़ता है शरीर कलेक्ट करने से पहले, तो एक 5-10 मिनट का काम था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो हाँ, 5-10 मिनट से ज्यादा अगर फैमिली मेंबर्स विलिंग हैं तो बस उतना ही काम रहता है। उसके बाद वो जो टीम आया होता है वो बॉडी कलेक्ट करता है तो और एम्बुलेंस में ले जाता है। तो मैं भी गया था उनके साथ तो, और वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया कहाँ बॉडी वगैरह कहाँ प्रिजर्व करेंगे वगैरह उन्होंने दिखाया।
1: जी, पूरी जानकारी आपको दी।
2: हाँ जी
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो रेप्ति जी एंड बालाजी, हम यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
3: जी

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रेवती जी से एंड बालाजी से, जिन्होंने अपनी माता जी का देहदान किया था। तो सर एंड मैम, हमारे श्रोताओं का आप ये भी बताइए कि कई लोगों को डाउट्स होते हैं कि अगर हमने देहदान कर दिया तो फिर हम अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाएं कैसे करेंगे, तो आपने आपके केस में आपने कैसे इस चीज को परफॉर्म किया, कैसी विधियां मौजूद है जो आपको बताई हो पंडितों ने?
2: मेरे को यही लगा, देखिए अगर आप थोड़ा उनका जो केश वगैरह या नाखून वगैरह काट के रख सकते हैं जी, उसका आप सिंबॉलिक क्रिमेशन कर सकते हैं करने के लिए। वैसे पंडित जी ने कहा आप देहदान कर रहे हैं तो इन चीजों का जरूरत भी नहीं है। हमने पता किया था हमारे जो फैमिली पंडित जी थे, उसके अलावा हमने और जो जानकार जो लोग हैं पंडित लोग हैं, कम से कम 4-5 लोगों से हमने पता किया, तो सभी ने एक ही बात बोला कि आपको ऐसा कोई रिचुअल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कुछ करना चाहिए तो मेरे को लगता है, तो पंडित जी ने ही बोला थोड़ा केश और थोड़ा नाखून वगैरह आप काट के रख सकते हैं तो उसका आप एक सिंबॉलिक क्रिमेशन कर सकते हैं।
3: सर और एक और चीज है इसमें कि इट इज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस बिकॉज इट्स माई

0: शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे पितृपक्ष हुए एंड ऑल। और आई एम श्योर कि दूसरे धर्मों में या दूसरे समुदायों में भी ऐसी कई विधियां मौजूद हैं, जरूरत है सिर्फ डिस्कस करने की। जिस तरह से आपने बताया कि आपने 3-4 ब्राह्मणों से, पंडितों से कंसल्ट किया इस चीज के लिए और कंफर्म किया, तो लोग बस बात करने वाला होना चाहिए। बाकी जानकारी देने के लिए तो आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बट लोग बात ही नहीं करते। अब बॉडी डोनेट हो चुकी है एंड काफी टाइम भी हो चुका है इसको, लगभग 6-7 महीने इससे ऊपर हो चुके हैं, तो अब आपको कैसा फील होता है इन सब चीजों को लेकर?
1: हाँ जी, हमें तो अच्छा ही फील होता है कि हमें लग रहा है कि हमारे मदर अभी भी स्टूडेंट्स को टीच कर रही हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा हैं। सो ये शायद अगर हम उनके शरीर का दान कर देते तो ये एहसास ना होता, तो कम से कम हमें ये सुकून है कि उनका शरीर अभी भी दुनिया में है, ये खुद भी वो एज ए टीचिंग रिसोर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
2: ऐसे लग रहा है कि उनको प्रमोशन मिल गया है और वो प्रोफेसर बन के, किताब बन के चली गई है उनके प्रिय प्रिय स्टूडेंट्स के पास, और उनके थ्रू सरस्वती माँ का उनका आशीर्वाद मिल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सही है कि मतलब जब स्पेशली जब एनाटॉमी लैब में इनको डेड टीचर्स माना जाता है तो इनकी पूजा भी की जाती है उस टाइम पर, जब लोग सीखते हैं उससे तो। और जब कोई बॉडी मेडिकल कॉलेज को दी जाती है तो मेडिकल कॉलेज उसका पूरा फूल मालाओं से स्वागत करता है,
1: क्योंकि हमारी मदर का भी स्वागत हुआ था।
0: जी जी
2: सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट वीक मेरा सपना आया मेरे मदर के लिए, ओके? और उन्होंने वो पूरे फॉर्म में हेल्दी होके मेरे पास आई थी, दरवाजे के पास बैठी थी, अंदर नहीं आई, और वो मुझसे ग्रीन टी पीती थी पहले जाने से, मतलब बिफोर शी पैस्ड अवे, तो उन्होंने फिर से मुझसे ग्रीन टी मांगा सपने में और पी के गई।
0: जी बिल्कुल, वो खुश लग रही थी आपको। जी बिल्कुल, यही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और बहुत सारे लोग यही सब सोच के रह जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, क्या सही कर रहे हैं हम या गलत कर रहे हैं। तो उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही चीज है, आपके किसी एक्ट से अगर किसी दूसरे का भला हो रहा है, जहाँ पर इतने सारे लोगों का भला हो रहा है, तो वो काम गलत कैसे हो सकता है।
2: सर, और एक और बात है कि हमारा शरीर जो है उसका एक एक अंग है ना भगवान का, नॉट ओनली इट्स अ गिफ्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ सच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो हमारे समाज में जो लोग हैं जो इनको इन चीजों को बुरा मानते हैं, इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, या उनको हिचकिचाहट है किसी तरह की ऐसे काम करने, उन सब के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे अंगदान या देहदान के ऊपर?
1: मैं कहता हूँ ये बहुत महान कार्य है, तो अंगदान भी आप करेंगे तो बोलते हैं कि एक इंसान से कम 8 लोगों को बेनिफिट मिल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हाँ, तो और समाज में जैसे कि ऑर्गन्स का बहुत जरूरत है, यू नो, बहुत डिमांड है, लोगों को मिलता नहीं है, तो इसीलिए अगर हमारी तरफ से हम अंगदान कर रहे हैं या बाद में देहदान कर रहे हैं, बहुत महान चीज है जिससे समाज का भला हो रहा है, तो इसलिए हमें जरूर करना चाहिए आगे आके। इसे हमें आप पाप पुण्य के लैंग्वेज में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलता है इसमें से।
2: सर, जैसे आत्मा जितना पावरफुल है बोलते हैं ना,
0: जी,
2: वैसे ही हमारा शरीर भी इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो हमें मृत्यु के बाद भी काम आ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि 8 लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 8 लोगों को नहीं, 50 से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। 8 लोगों की तो जिंदगी बच सकती है और 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर बनाई जा सकती है थ्रू टिश्यू डोनेशन। और जब देहदान की बात आती है तो सोचिए कि अगर 3-4 साल भी बॉडी प्रिजर्व करके रखी जाती है तो 4 साल में 100-150 स्टूडेंट्स का बैच आता है, तो आप 500-600 लोगों को आप एक टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहे हो। डॉक्टर्स बन के होल लाइफ वो लोगों का इलाज करेंगे एंड कहीं ना कहीं उन सब चीज का एक एक एक शेयर जो है वो आपकी मदर की आत्मा की शांति के लिए मिले जाएगा।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
2: उनको तो मुक्ति मिल ही गई, मैं तो अभी ऐसे ही समझती हूँ।
0: बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। जी।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम। अब समय है समाचारों का। ये मनोरंजन इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद, यानी कि समाचारों के बाद।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना, और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
3: इन कला में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। ये लोगों

0: मिट्टी में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं,
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी। और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तो तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही है सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं,
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा, यूज कर लो। स्कूटर भी पढ़ बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडी गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। श्रोताओं कर देने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कन्ने, तुहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने गूंज अपने बंदी।

ये तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक आशो तो बढ़ दे न कार्यक्रम जग गए तेने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो श्रोतों बढ़ दिन कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक आशो तो बढ़ते ना कार्यक्रम जग गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे यहाँ ट्यून कितने आए अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला करे तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मश।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही है सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे कहाँ देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं,
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

ही जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने, नए पुराने,

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और एक कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा लेकर हम सचिन कपूर हाजिर हुआ हा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं इस कार्यक्रम मंच अपना प्यार देने वास्ते। और बरखा अज कुरला की सो काफ़ी ज़्यादा रो वो शो तो है ना तो अज कुरला वा आई थिंक दुआ दिन हाँ बिल्कुल है और कुरला काफ़ी ज़्यादा रो हाँ बेगा की सो काफ़ी ज़्यादा बरखा थी शो तो बाद की सो मौसम आई थिंक दोई की वजह की सो काफ़ी ज़्यादा बदला बचेगो थो और तत्व बाद छो तो दो बजे बाद अब जो आई थिंक ढाई की बजे बरखा लगना की सो शुरू हुई है और इतनी खतरनाक बरखा की सो बच्चो कर दे श्रोताओं की कोई मतलब तो है हिसाब ना ला सकते कि इतनी खतरनाक बरखा किया सो इस समय बच्चो कर दे श्रोताओं तो सब हूँ कर देने इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हूँ सचिन कपूर हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा जो होस्ट करूँ करता हा। इस कार्यक्रम में तो है सब श्रोता जरूर रहोगे जुड़ी सकते हैं नंबर आंदा सी 9 8 8 7 0 9 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7 0 8 8 7 0 9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर अपना पसंदीदा गीत किया सुन सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं इन श्रोताओं इनके पहले श्रोता गण के सो सूगी कनेक्टेड हिन पूछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन नमस्ते जी
1: काम तो करना पड़ता है
2: बिल्कुल
0: नमस्ते जी
3: क्या चाल है
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन हेलो थोड़ी वीडियो सेट रही आवाज धीमी करी दिया जी
3: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी
3: नमस्ते क्या हाल
0: चाल बहुत बढ़िया जी तू दस तुम दे क्या हाल चाल ना
3: भाई थोड़ा बढ़िया
0: अच्छा जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
3: अच्छा
0: तो बजरे शाहपुर अगनारी भी बरखा की ना जी
3: ना भाई शाहपुर बरखा ना धूप लग रही गर्मी बहुत बजा दिया
0: ओहो हेरा भी बहुत ज्यादा थे बेगा काफी ज्यादा धूप थे लेकिन हब जो किया सो इतनी तेज तरार बरखा प्योंदे कि आऊँ अब जो अपने लाइव वास्ते इच्छू करता तो पूरा सिजगो इस समय आऊँ मतलब इतनी तेज बरखा की वेन कोट रहे अंदर भी सिजगो इतनी ताड़ फाड़ वाली बरखा की सो बुच्चू कर दिया
3: अरे कर्म कर रहे भाई तू धर्म साल वाला इन देखा रूम चंदा ना सुबह से गाते हैं
0: अच्छा अच्छा हाँ कर्मारी गल इंदे इंदे है ना जी
3: हाँ जी इंदे आज तीन त्रिया दिन बुच्चू बरखा शुरू है ना
0: अच्छा आना है दो ही दिन तीन दे भी खरे मतलब हुके हुके का डीते थी है बदले हो तो करता तो लेकिन बार खाना बच्चों दे थे लेकिन

0: अज जो बोए तो मतलब इन लगुंदे कि मजे चले आसी जनेरा भी
1: बड़ी और गर्मी धूप लग रही है, इतना उबाला, इतनी गर्मी है कि आज ज्यादा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: इतनी ज्यादा आशा तो तुंद किनारी थोड़ी ज्यादा भी बंदे गर्मी है ना जी।
1: हाँ जी गर्मी ज्यादा होंगे भाई, धर्म सारा थोड़ा फर्क है ना आ रहा धर्म सारे रहा।
0: हाँ जी हाँ जी इस किनारी घट बंदे थोड़े।
1: हाँ जी
0: अच्छा तो ये दस कि तुसु एक ही पता कि भाई इस किनारी घट बंदे है
1: इन जगह अंदर अंदर भाई मतलब थोड़ा है रहा।
0: अच्छा अच्छा कोई
1: हाँ जी
0: रिश्तेदार है कि
1: रिश्तेदार तो हम आए
0: कुड़ने जी
1: मेरे रिश्तेदार हैं जी ना दिन उड़ी साइड भाई।
0: अच्छा नड्डी साइड है।
1: अच्छा
0: अच्छा चलिए तो है ये तो दसी
1: भाई
0: तक।
1: गीत होना हो आप
0: हाँ जी गीत तो सुतुसु जरूर होना ना मिल पर तो है तो सीता की तो है शाहपुरों बल्लू दे लेकिन इन्हें दसो कि शाहपुर कस जगह थो बल्लू करते हैं।
1: प्रॉपर शाहपुर भाई क्यारी
0: अच्छा प्रॉपर शाहपुर
1: शाहपुर क्यारी।
0: क्यारी ठीक है।
1: हाँ जी
0: चलिए तो तुम दसो कि शाहपुर किनारी की ऐसो इस समय धूप लग रही है और पिछले त्राए
1: हाँ
0: दिन
1: जी
0: थो कि ऐसो कोई बरखा ने बोए शाहपुर किनारी है ना जी।
1: ना पिछले दिन हुए ना आज दिन हम पाल के दिन छोड़े। हाँ
0: अच्छा चलिए ठीक है जी।
1: जी
0: तां कौन दिन गीत होना पसंद कर ले जी तो है
1: भाई ये तो हम आधे लौट की आ।
0: लोटकियो।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तो सुए गीत बने रहे रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर हा श्रोतों तुम अपना आर से वेडियो जो कि कार्यक्रम मंच सभी री फरमाइश अगेन सो असु जरूर पूरी करनी हिन और इस समय धर्मशाला रा मौसम की असो वह दसी लेंदे ना काफ़ी ठंड की असो बोए है श्रोतों। इस समय अगर हम गल करूँ तो 22 डिग्री सेल्सियस रे आस पास किया सो मौसम दसु कर दे हिन हाँ 22 डिग्री सेल्सियस रे आसपास मौसम अशो तो ना मेरी गल करूँ जतियों अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बल दे हिन ता सो कि असो लगभग लगभग 97% रे आसपास अशो तो है ना तो ये इस समय धर्मशाला रा मौसम शो तो। और चलिए जी कार्यक्रम में अगू असु की असो जरूर बढ़ना हा तो सब बन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और कार्यक्रम जो आगो बढ़ दें शो तो और आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रहे इस गीत सोगे आगाज तो बाद फिर कुछ एक अन्य खास जानकारी होगी क्या सो तुसु सब भी श्रोता जो है ज़रूर जानकारी की है सो बयां कर ले साझा कर ले असो फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो हेरदेन मनो बिंदु देवी जी असु हेरू कर देन। अच्छा पिंकी पिंकी प्रिया शर्मा अच्छा पिंकी जी तो है सब बाखूबी जानते बुने ने पिंकी जी भी किए सो लाइव असु हेरू कर दे ना और पिंकी जी इंदे आरजे हिंद शो तो जो कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैं तो है तीनों अक्सर हुन देन त्यारी प्यारी दी आवाज़ खास कर अक्सर हुन देन। तो फिलहाल चलिए कार्यक्रम जो है आगू बढ़ंदे हिन और आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रहे इस गीता सोगी बने रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने पन रही।

0: FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा के अंसो बाखूबी चल रही है और तो है सब हूँ कर देने बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट में तो श्रोतों कॉल जरूर कर सकते हैं ना सुहोग सोगी मिल सकते हैं कॉल करी करे अपना पसंदीदा गीत की असो होने सकते हैं श्रोतों 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके गोएं गोएं बिलीन दें जी 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो होने सकते हैं और अपने क्षेत्र रे जानकारी की असो साझा कर सकते हैं श्रोतों कार्यक्रम जो है बढ़ते दिन थोड़े करिए और हगूँ और इन द्रोतागण असोगे कनेक्ट किया न सो हम बुझ गया हिन तब उस दिन की कुण बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन। नमस्कार जी वेड़ी गुंजन मां स्वागत है।
1: हाँ जी तो आप
0: हाँ जी
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोल लंदन और कड़ी थों बोल लंदन जी
1: आऊं बागनी से बल्लू कर दा।
0: अच्छा बागनी थों कौन बोल लंदन
1: जतिन
0: जतिन जतिन ना दसो अपना तो है
1: क्या
0: अपना ना के दसो तो है
1: जतिन
0: जतिन जतिन जी कुंडीनी क्लास सामा पढ़ दे कस स्कूल ले पढ़ देन
1: आऊं सिद्ध वाड़ी स्कूल ला पढ़ा।
0: अच्छा क्या स्कूल ला रहना तुम दे रहे और कौन देनी क्लास है
1: जी अच्छा सिद्ध वाड़ी।
0: अच्छा कस क्लास समझ पढ़ देन
1: छेमी
0: छेमी
1: अंजी।
0: अच्छा तो पंजारा पढ़ा इंदा तुझ वो
1: अंजी
0: होना ला
1: पांच इकम पांच पांच इंदा पांच ये कंदा पांच ऐसे भी इंजी सारे बड़े बच्चे पांच ऐसे भी
0: फरमाइश पूरे बोने अगर तो है पहाड़ा ना होना उरो बंदा ना पंजारा ता तुंदे फरमाइश पूरे ना बोने थे।
1: अच्छा
0: चलिए बल्ला कौन देनी फरमाइश है तुंदे
1: मेरी फरमाइश केलंग बजीर
0: केलंग बजीर
1: हां जी।
0: अच्छा कसेरी आवाज में होना जी
1: अजय भरमोरी
0: अजय भरमोरी री आवाज में होना चांदन हां
1: जी।
0: ठीक है जी जरूर होना ले तुसु
1: अल्लाह
0: धन्यवाद जी
1: तो
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो हूँ करते हैं श्रोतों आइए कार्यक्रम जो हगू बढ़ते हैं और तो है सब श्रोता कॉल किया सो जरूर कर सकते हैं जी कि मैं तू दसो श्रोतों 708-8-709 पर नंबर आक मौके फिर शेयर करना हाँ 708-8-709 पर शो तो मौसम रिमार और कांगड़ा में चो ट्रेन अगेन सो रद्द होया कांगड़ा क्षेत्र में लगातार जो बरखा बुच्चू कर दी है भारी बरखा के बुच्चू कर दी है शोधों ठेरे रेल पटरी पर गया सो पत्थर गिरने रही घटनाएं किया सो चलू कर दी हिन है ना कि रेल ट्रैक पर गया सो पत्थर लुड़े गच्चू कर दे हिन पठानकोट जोगिंदर नगर वे बिच किया शोतों सो वेल यातायात पर किया सो कर खनकर का यातायात प्रभावित था पत्थर लूट रहिन भूस्खलन आ जो कि बरसात है तू वो बताया बरसात और बरसात रे कारण किया सो ट्रैक में आइंदा पहाड़ी इलाका है ना है तो आने की इंदा पदरा इलाका है ना पहाड़ी इलाका था ये भी किया सो बरसाले बड़ी सारी चीज़ आता हूँ किया सो आसू सब भी हो पहाड़ी मन मुझ किया सो जूझना पैंदा हाश होता हूँ तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सोगे कार्यक्रम हिंदी अपने ही गप्पा गया ना सो हूँ करते हैं फरमाइश रा दौर गया सोए चली रहना हा शो तो जानकारी रा दौर भी है चली रहना हा लेकिन चलते तू सब भी श्रोता जो अगली फरमाइश रही और बने रहा जुड़ी रहा आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे

শত এফ এম ব্যান্ডে কিয়ানুদেশ আমরা 2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুনছেন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রা ওর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গেন সো চল রহি না এই কার্যক্রম যা হগো বড় ইন সদ ওয়াক ফরমাইশ ওর ইন্দি ফতেপুর থো পূজা দেবী রি পূজা ভট রে মাফ করা পূজা ভট কে সো জঙ্গলা ঢলিয়ারা সং কে সো হোনা চাহতে जरूर हूँ ले पूजा भट्ट जो भी लेकिन पूजा भट्ट और अन्य ऐसे इंदे जो रेगुलर श्रोता तीन था इंदे गुजारिश भी आके तो है बाय मैसेज तो कर दें लेकिन बाय कॉल भी किया सो कार्यक्रम में कॉल किया सो कर ही सकते हैं है ना ताकि मनु भी पता लगा कि तुंदे आसपास के क्षेत्र रे कुछ जानकारी भुआ है ना कुछ अपडेट भुआ कुछ गल बंदे कुछ एक्सपीरियंस बंदा मनुरा सो शेयर करना इस कार्यक्रम में बड़ा जरूरी है आशो तो और ये चीज़ अगेन सो इस कार्यक्रम

मंच किया सो इस कार्यक्रम जो खास बनंदी हिन, इस कार्यक्रम जो थोड़ा अलग कर दी हिन। बहरहाल जंगला ढलियारा गीत किया सो है ज़रूर हुन ले सतो, लेकिन आइए तथों पहले इंदी अगली फरमाइश अतः फरमाइश जो कर लेंदे हिन है पूरा अजय भरमोरी री आवाज़ में आएगी तो ना तो इंदा श्रोता थी है हल्के देर श्रोता छेमी पढ़ने आए श्रोता तथियों।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही तुम्हें वेडियो सेट में तो सब श्रोता जरूर जुड़ी सकते हैं जी जुड़ू करते हैं 7088879 पर नंबर आग मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 7088879 पर चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और अगली जानकारी होगी कि सो श्रोता तुसु सभी श्रोता जो कि सो कनेक्ट करते हैं बहरहाल इन दया श्रोता सो गए कनेक्ट लग रहे हैं भूना श्रोतों उस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू करते हैं नमस्ते जी
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू दिन
1: जतिन
0: जी कड़ियों बल्लू दिन
1: आऊं बागनी हूं बल्लू करता
0: अच्छा बागनी तो
1: अच्छा
0: जतिन जी कस स्कूले पर दिन कौन दिन क्लास में पर दिन
1: छेमी क्लास
0: अच्छा जी जतिन जी तो हब जो था ना फोन करो
1: हैं
0: पहली बारी फोन करूँगा
1: हाँ जी
0: अच्छा अब पहले भी
1: गाना वाला ख्याल
0: अच्छा
1: हाँ जी गाना वाला ख्याल
0: ठीक है जतिन जी धन्यवाद
1: क्या बोल देना
0: जी
1: जो बना लुड़दा
0: हाँ जी हाँ जी
1: वो वाला गाना सुना दीजिए
0: हाँ जी बिल्कुल तुंदी फरमाइश पूछेगी ना पूरी जतिन जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी अक फरमाइश तो अभी जो भी कॉल करी थी पहले शायद है ना हेलो हाँ जी मिल तो है अब जो भी कॉल करी थी ना थोड़ी देर पहले चलिए माफ कर रहे जतिन जी री आवाज नहीं चुकर दी श्रोतों और अगली जानकारी किनारी है क्या ना सोच चली बंदे ने तो अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते राधे राधे
0: हरे कृष्णा जी राधे राधे ठीक ठाक ना
2: ठीक ठाक भाई तू बल्ला
0: बढ़िया जी बढ़िया और कदे लग रहे बरखा
2: बड़े चाल बरखा लग रहे ऐसा
0: हाँ ते बुझेगी आना जी
2: दादा आती ही ना बात उपचार आते दी है ना बार हम तबर ना है तू
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते ना वही पर खारा ना है तूने करे
2: खारा बुआ क्या था
0: बरसात लग रहा था तूने करे बरखा तो बुना चेंद दिया
2: जरूर जरूर यार क्या था
0: जी और
2: मेरा तो मेरा गाना ना तो तू सुनाओ कि सुन रहा जाऊं
0: चलो नाराजगी दूर करिंदे नाराज ना बुना चेंद जी दादी माता रा भजन तो बोल रहा था जरूर हब जो पूरी करी ने असु है ना जी
2: ठीक है भाई
0: ठीक है जी धन्यवाद
2: ठीक है भाई धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही श्रोतों तो ये कार्यक्रम भी और बढ़ते हैं और जानकारी दो कि शेयर करते हैं श्रोतों जिला मुख्यालय धर्मशाला वे सोगे लगते दाड़ी क्षेत्र रे आऊँ गल करना लगुआ यानी कि दाड़ी एरिया रे आऊँ गल लगुआ करना झिकली बड़ोल स्थित ITI रोड वार्ड नंबर 13 माँ के सो दुगली कुल वे बदहाली बरखमा फिर सामने की ऐसो चले आए हा करीब 100 साल पहले की ऐसो सफाई और उचित निकासी जो लेकर के ऐसो शिकायत दर्ज भूने वे बावजूद भी कुल किया सो गंद और झाड़ियों थों किया सो भर रहा तो इस समय हालत आ ये तो सुबह है जरूर शेयर कर ले लेकिन इन द अगले श्रोता असूगी कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट हो चुके हैं बहरहाल इन दिन तो फिर कनेक्ट कर दें तो है दसो करते थी ये तुसु श्रोतों के बदहाले या बड़े बड़े कुल्ला रहे था है ना 100 साल पहले किया सो शिकायत दर्ज हुई थी लेकिन फिर भी किया सो कोई अली तक एक्शन नहीं तो सोच लिया लगातार बर खरे बिच कुल पानी की असो लबा लब भूने पे बब लबा लब बुझगंदा और फिर वे की असो आस पास रहे घर में किया सो पानी ज़्यादा बुझगंदा हा और आस पास रहे घर की असो पानी बड़े गंदा शो तो जो कि अगर खतरा किया सो बन रहा असो सभी मतलब जो बड़ोल करिए वे जिकली बड़ोल रह जो निवासी हिन तिन्या वास्ते बहरहाल कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही हैं और इंदी अपनी गप्पा मन श्रोतों इंदे अगले श्रोता सूगी के नो बिल्कुल रेडी हैं तैयार हैं और कनेक्ट कर लेते नहीं हूँ। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार जी। श्रोतों कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के सो चल रही और कार्यक्रम मंच अब थोड़ा करी और हगो है क्या सो चल दे हिन और यह जानकारी होना कर दी थी श्रोतों तो है तुस जो कि जिला मुख्यालय धर्मशाला वे सोगी लगते दाड़ी क्षेत्र में जिकली बड़ोल स्थित ITI वार्ड पर के असो वार्ड नंबर 13 में दुगली कुल अभी बदहाली की असो बरखा में फिर सामने आए हैं। करीब 100 साल पहले की असो सफाई और उचित निकासी जो लेकर के असो शिकायत दर्ज होने रहे बावजूद भी कुल्ला मंच की असो गंध और झाड़ी के न सो कुल के सो गंदा और झाड़ी हो गई किया सो तीय भर रहा शो तो है ना जी लगातार बर खरे बिच कुल्लर पानी थो लबा लब भुने वे आस पास रहे घर में किया सो जल भराव रहा खतरा किया सो बन रहा शो तो स्थानीय निकासी व समाज से भी कुलदार चंद गुलेरिए के असो 16 मई 2025 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में शिकायत संख्या 1111-4-0-3-4-8 दर्ज करवाई थी। ये शिकायत संख्या शो तो मौके फिर आऊँ दस नो हाँ ये कोई समाज सेवी हैं जो कि जियारा ना श्रो तो कुलदार चंद गुलेरिया हैं 1111-4-0-3-4-8 पर दर्ज करवाई थी। इतों इतिमा वार्ड नंबर 13 री कुल जो दुगली कुल है ते भी सफाई और पानी भी उचित निकासी भी मांग की सो करी थी। रिकॉर्ड रहे अनुसार 29 अप्रैल 2026 जो शिकायत करते गया सो समाधान थो असहमति की सो जताई और मामला दोबारा अधिकारी जो भेजने री प्रक्रिया दर्ज हुए ठेरे बावजूद भी मौके पर समस्या बरकरार किया सुहास होतों ताए हाल हिन शिकायत करने के बावजूद भी किया सो कोई एक्शन नहीं कोई रिएक्शन नहीं इड़ी सेरी चलती सेरी की गलती है ना। बहरहाल इन श्रोता आंसू के कनेक्टेड हैं उस दिन कुंड बल्लुन दिन और खड़ी तो बल्लुन दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते भाई जी ठीक है।
0: हाँ जी बहुत बढ़िया जी तो है भले तो ठीक ठाक न।
1: हाँ जी।
0: हाँ कुंड बल्लुन दिन और खड़ी तो बल्लुन दिन। अच्छा नैना लुंटा थो नैना जी बड़े महीने बाद कॉल करूँ तो है कर गाय बुचूरे थी है
1: कड़ी भी ना
0: एग्जाम वगैरह था निन कि फर्स्ट टाइम लगी भी रेन
1: लगने वाले ना।
0: अच्छा फर्स्ट टाइम लगने वाले ना और नैना जी कदे लुंटा रा वातावरण माहौल एनवायरनमेंट
1: अल्ली तो बरखा लग रही है।
0: अच्छा और दूर पे हो रही है।
1: हाँ जी।
0: अच्छा मजा इंदा बुना ना लूंटा मा
1: बर्फ बुरखा गाना तो स्कूल ला तो रस्ते खराब।
0: अच्छा रस्ते खराब ने तुंदे। अच्छा तुंदे घर कड़ी ने ना एग्जैक्टली लूंटा मंच जो लूंटा कैंपेनिंग के सोता थल्ले है ना इच करे
1: कैंप धर्मशाला ऊपर।

0: जी पर रहना रस्सी बनानी हो।
1: हाँ जी
0: हाँ जी तो तीन बनाना आवे।
1: अच्छा चलिए ठीक है जी, अब तीनों भी बजट पास बोला था तीनों बनाई बनाई ना है ना बजट पास ना बोला था अपनी जेबों तक सीना लाना चलिए अक मुझे याद चलिया या चलो हम बाद हूँ अन्नू सो लेकिन कौन दिन गीत हूँ ना तुसु नैना जी
0: परंपरा गाना हना है दिया
1: अच्छा
0: सुनील राणे।
1: परंपरा रा कौन दिन स्टेप तुसु हुन्ना राणा साहब रा कगो
0: एंड
1: कौन
0: वाला हना है दिया
1: दिन जी हेलो नैना जी कौन दिन गीत बल्लू तो है
0: परंपरा
1: ना सोता हूँ समझे गो स्टेप कौन दिन बल्लू आ
0: जड़ विचर स्टेप का।
1: अच्छा बेचारा स्टेप चलिए ठीक है नैना जी धन्यवाद और
0: बाय।
1: शुक्रिया फिर मुलाकात कर ले नमस्ते जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो लेकर चलते हैं हगुम श्रोतों और फरमाइश दौर गए सो पूरा कर लेंदे है ना बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो गए पूजा भट्ट रे फरमाइश थी शतों ए फरमाइश जो कर लें देन पूरा और तथों बाद बाकी फरमाइश भी कर देन पूरी शतों बने रे आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे।

चलिए श्रोतों, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंश इस समय चल रही हैं और फरमाइश पूजा भट्ट रही थी, पूजा भट्ट जो कि सो सजनरी भाड़ा लग रही हैं श्रोतों। आइए फिलहाल पूजा जी तो है भाड़ा सजना जो ना है चल देन थोड़ा करी

इलाके थोड़ा करी ना तुंदे इलाके अंदर या और फरमाइशा अंजना जी री, अंजना जी यो दादी माता रा भजन की है, सो पिछली बार भी रही छूरा तो अंजना जी दसू कर देन की फरमाइश ना पूरे भी छोरे थे था अब कर देन ये भी फरमाइश हाँ पूरे शो तो है ना बल दे न कि कसी हो नाराज के सो ना बोना चिंता कोई नाराज ना बोना चिंता तुंदी लाइफ में हर कसी हो खुश की है सो जरूर रखा शो तुम कहो कि जिंदगी तो लंबे ने जितोने आए सोच दे लेकिन जिंदगी में बड़े लंबे है कि कहने कसी रे कली जरूरत पेगा छे भी असू ना पता बुंदा शो तो और कहने कुण मणु असु वास्ता कि असु कितना इंदे कम्मे चली या इंदे सेवा मन चली या इंदे दुख तकलीफ अम्मा चली या सो भी ना पता बुंदा हो जो इंसान दुख तकलीफ माँ तुसु सो गया शो तो सो तुंदा अपना बरहाल लेके चल दे तू सभी जो इस गीता रे किनारी।

0: शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा कैन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेली गुंजन धर्मशाला मंच और शो तो हृदय दे वक्त रा भी पता नहीं लगता कि कहने गया सो वक्त बचेगो तुसु सभी तो अलविदा लेने रा शो तो है ना। तो प्रदेश भी हम गल करना चलो प्रदेश में हर महीने की अशोतों सो लगभग लगभग 65 मन हो क्या सो सुसाइड करो करते हैं और ये तो है सोच लिया कि 65 मन हो सुसाइड करो करते हैं इनके प्रदेश भी गल ये शोतों जानकारी आंकड़े वे अनुसार हूँ हिमाचल प्रदेश में आत्महत्या की घटना में वर्ष 2024 दौरान किया सो मामूली कमी दर्ज हुए हा। हर वर्ष 800 थो अधिक मन उके न सो आत्महत्या करना आत्महत्या किया सो गर्व कर देन प्रदेश व्यवस्था गंभीर सामाजिक चिंता रहे विषय किया सो इस समय हा आत्महत्या करना मुझे लगता कि कोई सोल्यूशन ना बुंदा हा किसी भी गल्ला रहा और किसी भी गल्ला वह सोल्यूशन अगर चींदा बुंदा शो तो सो बुंदा कि बही करी गल करना। बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ेंदे और इन अगले श्रोता आसूगे कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी।
0: अजय कौन
1: बोला दे जी? शापरे दे बोला जी, पलवाला रेलू पलवाले से बोला जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: हां जी।
0: बड़ी लेट फोन की तरह क्या बात है। आज आगाज भी शाहपुर थो बुआ और कार्यक्रम रा अंत भी शाहपुर में बुना। कोशिश जरूर कर ले की तुंदे फरमाइश पूरी बो।
1: ठीक है जी। करनाल राणे सुनाई दे कोई गाना।
0: राणा साहब दा कोई भी गीत।
1: हां जी हां जी।
0: चलिए ठीक है जनाब जरूर होण ले।
1: ठीक है जी।
0: ठीक है जी धन्यवाद। शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कैन सो चल रही हैं। तो ये कार्यक्रम जो हगो लेकर ही चलते हैं शोतों और चलते हैं नैनारी कनारी। नैना फरमाइश करी थी टिल्लू थो और आइए हुनंदे ने गीत नैना जो

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही हैं ता श्रोतों फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुतो इजाजत गंदे गंदे शाहपुर तो कॉल छोरे और ज़रूर फरमाइशा सु पूरे करने हैं गंदे गंदे बलना चाहो माँ बाप री सेवा जरूर करा श्रोतों इतों मुट्ठा कर्म किया सो कुछ भी नहीं है माँ बाप री सेवा जरूर करा कदी कसीरा बुरा किया सो मत करा अपने कर्म जो खरा किया सो जरूर रखा श्रोतों कजो कि एट लास्ट किया श्रोतों सो ना पैसा गाना सोगे ना बैंक बैलेंस गाना ना गड्डी मोटर गाने एट लास्ट के गाने सोगे सो कर्म गाने हैं श्रोतों कि तुंदे कदे कर्म किया सो रूरे हैं बहरहाल लेके चल दे तू सभी श्रोता जो इस आखिरी अगितरी और आऊँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुतो इजाजत नमस्ते श्रोताओं नमस्ते धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

शंभु की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहा चले?
5: तो ये सब
4: हमको मंडी जाना है। अच्छा, क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे हो? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। आप विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात।
1: बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं आरजे सचिन कपूर हाजिर हूँ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। श्रोताओं, तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। बहुत सारी जानकारियाँ 8 बजे तक ये सफ़र जो है वो आप सभी के साथ ज़रूर रहेगा। श्रोताओं, बहुत सी जानकारियाँ जो आपसे आपके साथ हम साझा करेंगे इस लाइव सेशन के दौरान, और साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो तो खुलता ही रहेगा। श्रोताओं, तो समय में बात करूँ तो इस समय धर्मशाला में मौसम है, जो तापमान है कहीं ना कहीं 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। नमी की बात की जाए तो 53% इस समय नमी है श्रोताओं, और साथ ही साथ विजिबिलिटी की बात की जाए तो 10 किलोमीटर तक विजिबिलिटी बता रहे हैं इस समय। तो आइए आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ, और फिर बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे गीत आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने पन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: तू मेरी मैं तेरा, बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोतों रेडियो गुंजन धर्मशाला में। चलिए श्रोतों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि गीतों की माला तो हम यूं ही परोते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। तो सबसे पहले धर्मशाला क्षेत्र की जानकारियां जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि वो सबसे पहले हम आप तक साझा करते हैं, शेयर करते हैं, है ना जी। ज़िला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी क्षेत्र की झिकली ITI रोड झिकली बड़ोल स्थित ITI रोड वार्ड नंबर 13 में जो है वो दुगली कुल की बदहाली बारिश में फिर सामने आ गई है श्रोतों। करीब 100 साल पहले जो है वो सफाई और उचित निकासी के बावजूद कुल गंद और झाड़ियों से भरी है जी। बिल्कुल बताना चाहते हैं श्रोताओं आप सभी को कि लगातार बारिश के बीच कुल जो है वो पानी से लबालब होने से आसपास के घरों में जो है वो पानी भर जा रहा है और पानी भरने का जो है वो आसपास के घरों में कहीं ना कहीं खतरा और मंडरा रहा है श्रोतम। स्थानीय निकासी व्यवस्था समाज से भी कुलतार चंद गुलेरिया ने 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में शिकायत संख्या 1140348 दर्ज करवाई थी। याद रखिए 2025 में 2026 चला है मान्यवर और 16 मई को शिकायत हुई है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में। शिकायत संख्या भी हम आपको बता रहे हैं 1140348 इस शिकायत संख्या है। शो तो बताना चाहते हैं वार्ड नंबर 13 की दुगली कुल की सफाई और पानी की उचित निकासी की मांग की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार 29 अप्रैल 2026 को शिकायतकर्ता ने समाधान से असहमति जताई और मामला दोबारा अधिकारी को भेजने की प्रक्रिया दर्ज हुई। इसके बावजूद मौके पर समस्या बराबर खड़ी है इस समय। तो ये हाल है इस समय हमने जो आप तक साझा किए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को, क्योंकि जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता है।
1: सब्सक्राइब नाउ, नेवर मिस अ फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

श्रोतो एफ एम एंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो चौकी सचिन कपूर। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो हम यूं ही खोलते रहेंगे श्रोतो। तो मौसम की मार और कांगड़ा में 4 ट्रेनें जो हैं वो रद्द हुई हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं श्रोतो। कांगड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और रेल पटरियों पर पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगज रेल खंड पर रेल यातायात एक बार फिर प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने पठानकोट बैजना आज यानी कि आज को पठानकोट बैजनाथ पपरोला खंड में चलने वाली 4 ट्रेन सेवाओं को जो है वो आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया है श्रोतों। रेलवे की ओर से जारी प्रेस के अनुसार रद्द की गई ट्रेनें ट्रेन की संख्या बताई है श्रोतों, है ना। भारी बारिश के कारण जो है वो कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिससे रेल परिचालन को सुरक्षित बनाए रखने चिंतापूर्ण हो गया है श्रोतो। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोतो वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम के इस बिल्कुल इस गीत की ओर। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही श्रोताओं।

शो तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बात है दुनिया को, और दुनिया की नज़रों में किस कदर आ गई। होता ना शो तो कभी जब हम अपने रिलेशनशिप को जो है जब छुपाते हैं और चाहते हैं कि हम सीधा जो है वो शादी ही करेंगे और उससे पहले जो है वो अपना रिलेशन किसी को नहीं बताएंगे, तो उनके लिए बहुत प्यारा सा ये गीत था कि ये क्या हुआ तेरी मेरी प्यार की बातें दुनिया की नज़रों में कैसे आ गई। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की ओर। ज़िला कांगड़ा में जुलाई और अगस्त के दौरान चोरी और शोतों बताना चाहते हैं 13 मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। जी बिल्कुल, चोरी के 13 मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में चोर करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर चुका है। शोतों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 84 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की है। शोतों बरसात के दिनों में ज़िला के कई क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। श्रोताओं पुलिस विभाग कार्रवाई करने के साथ ही और ज़िला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निर्देशों पर कड़ाई से अमल करने पर भी जुट गई है। श्रोताओं मिली जानकारी के अनुसार दोनों महीनों में कुल 1,53,820 रुपये की संपत्ति चोरी हुई है, जबकि पुलिस ने 84 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी की है। श्रोताओं आंकड़े के मुताबिक जुलाई में चोरी के 6 मामले दर्ज हुए थे। इनमें 4,94,000 रुपये की संपत्ति चोरी हुई थी, जिसमें से 2,10,000 रुपये बरामद किए गए हैं। शोतों जानकारियों का सिलसिला जो है वो पिटारा जो है जानकारियों का शोतों यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी शोतों को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर आप सभी के साथ। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, पढ़ना तो नहीं आप किसी को इश्क में। देखिए ये इश्क नहीं है आसा, कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं है आसा, मौत का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये इश्क आसान नहीं है जितना आसान हम समझ लेते हैं इश्क को। इश्क तो बहुत कुछ करवा देता है, कभी हंसा देता है तो कभी रुला देता है। शो तो फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का पिटारा जो खुल रहा है उसे और खोलते हैं श्रोताओं, और एक और जानकारी जो है वो आपके पास रखते हैं, आपके साथ उस जानकारी को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व संध्या पर श्रोताओं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आकाशवाणी शिमला से 14 अगस्त यानी कि कल 2026 को 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। FM शिमला, हमीरपुर व धर्मशाला और आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों से भी मुख्यमंत्री का संदेश प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र शिमला से मुख्यमंत्री का संदेश 15 अगस्त 2026 को प्रातः 9:30 बजे प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के संदेश के तुरंत बाद जो है वो प्रसारित किया जाएगा। श्रोतों जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं वेड़ी गुंजन की उसी गूंज के साथ जिस गूंज को आप अक्सर सुनते हैं, अक्सर महसूस करते हैं। चलिए लेके जाएंगे श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं को, क्योंकि जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ, और ये गूंज यूं ही बरकरार रहेगी, ये गूंज यूं ही महकती रहेगी, चहकती रहेगी। चलिए लेके जाएंगे श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ यूं ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः स्वागत है जी कार्यक्रम में। एंजॉय कर रहे हैं आप सभी बेहतरीन बेहतरीन गीत और गीतों के साथ। श्रोता जानकारियों का पिटारा जो है वो भी खुलता जा रहा है और जानकारियों के पिटारे के साथ आप सभी को हम रूबरू भी करवा रहे हैं। शो तो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में जो है वो बहुत सी कभी कभी दुख तकलीफ जो है वो आ जाते हैं, है ना। लाइफ में जो नहीं सोचा होता वो भी इंसान के साथ हो जाता है, जो शायद कभी एक्सेप्ट नहीं किया होता हमने वो भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, लाइफ है तो जीना तो पड़ेगा जीना भी पड़ेगा और श्रोतों चलना भी पड़ेगा आगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और गिल रचेंगे श्रीलंका में इतिहास। लग रहा है भारतीय कप्तान के पास सुनहरा मौका, 3000 रन पूरे करने से 157 दूर। श्रोतों इनकी 3000 रन कंप्लीट होंगे और 157 दूरी है अभी तक। तो बताते चलते हैं आपको, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज़ का आगाज 15 अगस्त यानी शनिवार से होने जा रहा है। श्रोतों शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की कोशिश गोल में सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने की होगी। श्रोतों इसी टेस्ट सीरीज के दौरान पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। करीब 18 साल लंबे लंबे समय के बाद श्रोतों बल्ला छोड़कर जो है वो हाथ में माइक थामने जा रहे हैं। भारत के श्रीलंका दौरे पर 15 से 27 अगस्त 2026 तक होने वाली दो मैचों की टेस्ट

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम। गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ हैं, हम साथ साथ हैं, क्या बात है। चलिए श्रोतो हम साथ हैं और हम साथ साथ जो है वो ज़रूर रहेंगे श्रोतो। फिलहाल लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे और इस जानकारी की ओर। विकासखंड पंचरुखी के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत कलेशपुर के वार्ड नंबर 3 निवासी स्वर्गीय बिहारी लाल की पत्नी ब्रह्मा देवी का मकान जो है वो श्रोतों रात करीब 3 बजे भारी बरसात के कारण अचानक गिर गया। श्रोतों जानकारी के अनुसार मैं बात करूं तो लगातार बारिश के चलते कच्चा स्लेट पोश मकान और साथ में लगा शौचालय व बाथरूम गिर गया। श्रोतों हादसे के समय ब्रह्मा देवी घर में ही थी, लेकिन गनीमत रही श्रोतों कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान का काफ़ी हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की है। मौके पर पंचायत प्रधान ने स्थिति का जायजा लिया। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ।

क्या बात है श्रोतो, ये गीत जब जब हम सुनते हैं ना, ये फिल्म जब जब हम देखते हैं ना, वाकई में ही राजा हिंदुस्तानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं श्रोतो। और हो भी क्यों ना, ये उस समय का गीत है, ये उस सिचुएशन, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो ये वाली सिचुएशन आप सभी के आंखों के सामने आ गई है। जैसे मैंने ये फिल्म देखी है तो मेरी आंखों के सामने जो है वो तुरंत ये वाली पिक्चर जो है वो सामने आ गई है श्रोतों, कि किस प्रकार से जो है वो करिश्मा कपूर को जो है वो उनके फादर साहब लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार किया था एक टैक्सी वाले के साथ, जो कि आमिर खान वो रोल निभा रहे थे श्रोतों। और वो नहीं चाहते थे कि वो ज़िंदगी में कभी भी उनसे जो है वो शादी करे, उनसे जो है वो विवाह करे, लेकिन प्यार का क्या कर सकते हैं ना श्रोतों, प्यार तो कभी भी किसी को भी कहीं भी जो है वो किसी से भी जो है वो हो सकता है। फिर वो नहीं देखते हैं कुछ भी, ना अमीरी ना गरीबी श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ आप बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए लेके चलते हैं, जानकारियों के पिटारा खुलता ही रहेगा श्रोतों, इसी तरह से चलता ही रहेगा। श्रोतों, प्रदेश में नशे के बढ़ते चलन के साथ HIV संक्रमण का खतरा भी जो है वो गंभीर चिंता बनता जा रहा है श्रोतों। वर्ष 2025-26 में HIV के 19% मामले सुई साझा करने के कारण दर्ज हुए हैं श्रोतों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शिमला के होटल एक निजी होटल में जो है वो आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने युवाओं से नशे और HIV के खिलाफ सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया श्रोतों। मंत्री ने कहा कि HIV के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। देश के सुरक्षित 15 ज़िलों में प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन शामिल हैं, जबकि 3 अन्य ज़िले जो है वो श्रेणी में पहुंच चुके हैं, सक्षम श्रेणी में मैं कहना चाहता हूं कि पहुंच चुके हैं श्रोतों। संयुक्त राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के 95-95-95 लक्ष्य को हासिल करने में हिमाचल देश में शीर्ष पर है श्रोतों, यानी कि बुलंदियों पर है। प्रदेश में नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो 17 OPD उपचार केंद्र जो है, जिसको हम कह सकते हैं OPD, 17 उपचार केंद्र जो है वो संचालित किए जा रहे हैं श्रोतों। इनमें से 1,023 मरीज का उपचार जो है वो चल रहा है श्रोतों। आइए कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल श्रोताओं, वक्त हो गया है समाचारों का, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और बनते रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला को, गूंज अपने मन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: और अब अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमित के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने

0: मीडिया विशेष करके लोकसभा में देखिए बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

अनुभव की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मश।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरचे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतों, अब जो मैं जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं ना, जो जानकारी अब तक मैं पहुंचाने वाला हूं ना श्रोतों, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए। अब ये न जाने क्यों, देखिए कहते हैं ना, आदमी जब मरने की सोचता है, आदमी जब सुसाइड करने की सोचता है, तो उसने जीने के सभी बहाने ढूंढे तो होंगे ना, है ना। क्योंकि मरने का तो सिर्फ एक ही बहाना है कि मुझे मरना है, मुझे इस दुनिया से जाना है। लेकिन जब तक इंसान जीता है तब तक उसने कई बहाने ढूंढे तो होंगे ना, जीने के कई बहाने उसने ढूंढे होंगे। फिर उसे अगर नहीं कोई भी बहाना मिला होगा जीने का, फिर आखिरकार इंसान फिर सुसाइड करता है। लेकिन मुझे ये लगता है सुसाइड करना जो है वो तर्क नहीं है, अपने आप को ख़त्म करने कर लेना, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना, ये मुझे लगता है किसी भी लड़ाई का अंत तो नहीं है। वो आप खुद ख़त्म हो जाते हैं, खुद को आप समाप्त कर लेते हैं, आप लड़ाई से नहीं जीतते। तो लड़ाई से जीतने के लिए जो है वो ज़िंदा रहना ज़रूरी है श्रोताओं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश में हर महीने कम से कम 50 से 60 लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की गतिविधि आप तक मैं साझा कर रहा हूँ श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में आत्महत्या की घटनाओं में वर्ष 2024 के दौरान मामूली कमी दर्ज की गई है श्रोताओं। हर वर्ष 800 से अधिक लोग जो हैं वो आत्महत्या करते हैं श्रोताओं। प्रदेश के लिए गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बना हुआ है इस समय ये श्रोताओं। वर्ष 2023 में प्रदेश में 818 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी श्रोताओं, जबकि 2024 में ये संख्या घटकर 813 रह गई। इस तरह एक वर्ष के दौरान आत्महत्या के मामलों में 5 की कमी आई है श्रोताओं। प्रतिशत के लिहाजे से ये 0.6% की गिरावट है श्रोताओं। आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2024 में हिमाचल में आत्महत्या के 813 मामले सामने आए हैं। औसतन देखें तो प्रदेश में हर महीने करीब 50 से 60 यानी कि 68 आत्महत्याएं हुई हैं, यानी लगभग हर दिन जो है वो 2 से अधिक लोग जो है वो मर रहे हैं, और 2 से अधिक लोग जो है श्रोताओं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ पारिवारिक समस्या, देखिए कहते हैं ना कि इंसान मरता नहीं है, उसे कलेश मार देते हैं। हाँ, ये सत्य है, ये सच है, पारिवारिक कलेश मार देते हैं। बाहर वाले से तो इंसान लड़ झगड़ लेता है, जहाँ नौकरी करता है वहाँ लड़ झगड़ के अपना जीवन यापन जो है वो दूसरी जगह कर लेता है। लेकिन जब इंसान परिवार से टूटता है ना श्रोताओं, पारिवारिक समस्याओं से जब इंसान जूझता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बीमारी और शादी संबंधित परेशानियां सुसाइड के प्रमुख कारण जो हैं वो इस समय बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये आंकड़ा वाकई में ही थोड़ा सा चिंताजनक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जेंसी स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन ये दूसरा पार्ट है श्रोताओं की शादीशुदा पारिवारिक समस्याएं, कुछ बीमारी की वजह से कि मैं बीमार हूँ काफ़ी सालों से, उस वजह से जो है वो सुसाइड कर ले रहे हैं, ये कारण है श्रोताओं। तो चलिए, और ये ऐसे कारण है कि इन कारणों पे शायद मेरे पास भी शब्द कम पड़ जाएं। पारिवारिक समस्या मैंने कहा ना कि इंसान हर एक चीज़ से जो है वो जूझ लेता है, लेकिन परिवार के कलेश से नहीं जूझ पाता है श्रोताओं, वहाँ हार जाता है। बीमारी भी वैसी है श्रोताओं, है ना, शादी संबंधित परेशानियाँ सुसाइड का प्रमुख कारण बनी हुई हैं इस समय हिमाचल प्रदेश में। जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ। गूंज अपने मन की और गूंज हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: जोकर
1: शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वीडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चल रहा है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से जो है वो बहुत सारी जानकारियां हमने आप तक साझा की हैं, श्रोतों शेयर की हैं और जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बनता रहेगा। श्रोतों आप तक ये जानकारी जो है वो पहुंचाते हैं। सिरमौर में जो है वो कुदरत का कहर, देखिए हिमाचल प्रदेश में हमेशा कुदरत का कहर जो है वो रहा ही रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच जो है वो बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। श्रोतों राज्य में भूस्खलन और मलबा आने से जो है वो 209 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इस समय सिरमौर ज़िला में चंद घंटों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा हुआ है श्रोतों, जहां राजगढ़ उपमंडल में 3 मंजिला मकान गिरने से मां बेटी की मौत जो है वो हो गई है और 2 छोटी बच्चियां घायल हो गई हैं। श्रोतों सिरमौर ज़िला के राजगढ़

उपमंडल की ग्राम पंचायत दीदगा के जो है वो छड़छड़ियाँ गांव में जो है वो श्रोताओं साफ मौसम के बीच 3 मंजिला मकान जो है वो अचानक गिर गया। श्रोताओं, मकान में उस समय 2 महिलाएं और 2 छोटी बच्चियां मौजूद थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 अगस्त तक जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। और श्रोताओं बताना चाहते हैं, 14 अगस्त को जो है वो बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

FM Band 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

समूह की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब।
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। आप विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ सचिन कपूर। अंतराल के बाद शो तो मन करता है कि एक छोटा सा गीत सुन ले, तो देखिए मन करता है तो ये मन का रेडियो तो है, यानी कि आपका अपना रेडियो तो है, तो चलिए जी मन को नहीं मारना चाहिए और मन की सारी बातें पूरी जो है वो कर देनी चाहिए।

0: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोतो एक छोटा सा संदेश आप तक हम ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं। अपनी प्रकृति का जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। देखिए इन्वायरमेंट डे पर ही हम ये संदेश अक्सर देते हैं कि पेड़ लगाएँ, पौधे लगाएँ, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें, प्रकृति को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट डे के दिन ही नहीं, यार जे सचिन कपूर जो है वो हर दिन हर रोज़ जो है वो ये संदेश देता है कि अपनी प्रकृति को ठेस ना पहुंचाएं, जितने पेड़ हो सकते हैं, जितने पौधे हो सकते हैं वो ज़रूर लगाएं। और देखिए क्योंकि एक दिन संदेश देने से जो है वो साल भर शायद लोगों के जहन में ये बात ना रहे, तो मैं ये अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि अगर हम हर रोज़ या फिर कभी कभी जब भी हमारे माइंड में आ जाता है तब इस संदेश को आप तक पहुंचाएं। तो चलिए थोड़ा सा कोई ना कोई तो जो है वो इस बारे में सोचेगा और काम जो है वो ज़रूर करेगा, है ना। तो ये संदेश हमारी ओर से है कि प्रकृति को सेफ रखें, पेड़ लगाएं और जीव जंतुओं का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें। श्रोताओं अपना ख्याल भी ज़रूर रखें, माँ बाप का ख्याल जो है वो भी ज़रूर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर फ़िलहाल तो आपसे लूँगा विराम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समय हो चुका है 7:45 और अब वक्त हो चुका है श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की नई दिल्ली में द्वारिका स्थित हिमाचल निकेतन की प्रगति की समीक्षा। भाजपा ने आज़ादी के महापर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकाली तिरंगा यात्रा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में नशा माफिया पूरी तरह बेकाबू, सरकार इसे रोकने में नाकाम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा बरसात के कारण बंद सड़कों को खोलना सरकार की प्राथमिकता। और हमीरपुर के सुजानपुर में प्रस्तावित निशुल्क मेडिकल कैंप की अनुमति न दिए जाने से सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट नाराज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में द्वारिका स्थित हिमाचल निकेतन भवन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय में पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना हिमाचल के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन में 4-स्टार श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ये भवन दिल्ली आने वाले हिमाचलियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आज़ादी के महापर्व के मौके पर भाजपा द्वारा आज प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली। बिंदल ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में देश के इतिहास को याद किया जा रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश के

0: विधानसभा क्षेत्र में आजादी के महापर्व के ऊपर तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प। आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों उन वीर सेनानियों को नमन करते हुए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे तिरंगा यात्रा निकाली। 14 तारीख को देश का विभाजन उस दिन को भी याद कर और उन हजारों हजारों बलिदानियों को नमन करते हैं जिनका बलिदान भारत के विभाजन के कारण हुआ।
1: कुल्लू में भी आज भाजपा और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। सोलन जिला के अर्की में भाजपा ने पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली और देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश में नशा माफिया पूरी तरह बेकाबू है और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि सरकार नशा माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय इवेंट और वॉकाथॉन में व्यस्त है, फलस्वरूप युवा पीढ़ी लगातार नशे की चपेट में आ रही है और परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में 2 सालों में HIV के मामलों में 1.5 गुना वृद्धि और सुई से संक्रमित होने के आंकड़े लगातार बढ़ने को चिंताजनक बताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 14 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद रात 8 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:45 के स्थान पर 6:30 पर प्रसारित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए जल, जंगल और जमीन का संरक्षण सबसे अहम है और वन विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुरकड़ा में जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर चंबे का पेड़ नामक पौधा भी रोपित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन प्रबंधन और वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मिल रहा है। रोहित ठाकुर आज PM श्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहडू में खेल छात्रावास के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक लगभग 9,000 पद भरे जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य 12,000 से अधिक पद भरने का है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि फिलहाल सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में भारी बरसात के कारण बंद सड़कों को खोलने और किसानों व बागवानों की लाइफलाइन को मजबूत करना है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के मौके पर कहा कि प्रदेश में लगभग 250 सड़कें बंद थीं, इनमें से अधिकांश सड़कों को मशीनों की मदद से खोल दिया गया है।
2: देखिए, मैं इसका हम रोज अपडेट ले रहे हैं। पिछले कल भी जैसा मैंने आपको कहा कि करीबन 200 से 250 सड़कें बंद थी, मगर शाम तक वो आंकड़ा खुल भी जाता है। उसमें से 200 बंद होगी तो करीबन 100 या 75 जो है खुल जाती है, क्योंकि हमने लगातार मशीनें जगह जगह पे लगाई हुई है। JCB मशीन है, पोकलेन मशीन है, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बागवानों को, किसानों को कोई समस्या ना हो।
1: सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा 6 सितंबर को हमीरपुर जिला के सुजानपुर में प्रस्तावित निशुल्क मेडिकल कैंप की अनुमति नहीं दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अभिषेक राणा ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस निशुल्क मेडिकल कैंप का ट्रस्ट को कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि इसका सीधा नुकसान क्षेत्र के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को है जो महंगे इलाज के लिए घर से दूर नहीं जा पाते। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मनाही के बावजूद संस्था अपने जन कल्याण कार्य हमेशा जारी रखेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और दूर दराज के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं निशुल्क मिलती रहें।
3: जन कल्याणकारी संस्था हमारी 25 वर्षों से लगातार लोगों की सेवा कर रही है। इस बार हमारी संस्था ने फैसला किया था कि हमीरपुर जिला के सुजानपुर सिविल अस्पताल में हम एक कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स पीजीआई के वहां पर अपनी मुफ्त में सेवाएं देंगे और जो लोग इलाज करवाने में सक्षम नहीं है उनकी संस्था मदद करेगी। लेकिन परमिशन सरकार ने कैंसिल कर दी है इस मेडिकल कैंप के लिए। एक मेडिकल कैंप या एक संस्था जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं और सिर्फ समाज सेवा के लिए वो काम किया जा रहा है, उन लोगों का नुकसान है जो डॉक्टरों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, दूर दराज क्षेत्र में थे। परंतु इस प्रकार से सरकार का स्वभाव जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को प्रदेश के सबसे सुदृढ़ नेटवर्कों में शामिल करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। धर्माणी आज 33 केवी बम्ब हटवाड़ विद्युत केंद्र के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस उपकेंद्र का निर्माण कार्य अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए बहुत सराहनीय योजनाएं आरंभ की हैं। सुनील शर्मा बिट्टू आज हमीरपुर के निकट सवाहल क्षेत्र में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में सोलर लाइटें लगाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बिट्टू ने सवाहल में महिला मंडल भवन और डिस्पेंसरी के लिए बजट का प्रावधान करने की बात भी कही। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग में आयोजित होने वाले जनजातीय मेला 2026 के उपलक्ष्य में आज मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में महिला व पुरुषों के विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जनजातीय मेले के उपलक्ष्य में आज ही बुनाई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता जिला के खामटूल समूह ने जीती। इस बीच जनजातीय मेले से पहले आज केलांग में जिला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ केलांग सुंदर केलांग का संदेश भी दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की नई दिल्ली में द्वारिका स्थित हिमाचल निकेतन की प्रगति की समीक्षा। भाजपा ने आजादी के महापर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकाली तिरंगा यात्रा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में नशा माफिया पूरी तरह बेकाबू, सरकार इसे रोकने में नाकाम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, बरसात के कारण बंद सड़कों को खोलना सरकार की प्राथमिकता। और हमीरपुर के सुजानपुर में प्रस्तावित निःशुल्क मेडिकल कैंप की अनुमति न दिए जाने से सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट नाराज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे थे। तो श्रोतों, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को यही कहने का कि फिर मिलेंगे, यानी कि कल मिलेंगे 4 से 5 और रोज़ाना मिलेंगे, इसी तरह मिलते रहेंगे। श्रोताओं, आपसी भाईचारा जो है वो ज़रूर रखें, आपसी प्यार मोहब्बत जो है वो ज़रूर रखें और इस नाचीज़ आरजे सचिन कपूर को जो है यूँ ही प्यार करते रहिएगा, यूँ ही अपना आशीर्वाद रखिएगा इस नाचीज पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर ले लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

शक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: ऐसे क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रही, भाव तो दिए
5: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी पढ़ देगा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना। स्कूटर भी पढ़ देता।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगा दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: ऐसे क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
5: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।